0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2-471-234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 में

मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑनर ऐप ते सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

0: अध्यापक उस शम्मा वांग है जो आप बढ़दी है पर दूजियां नूं रोशनी दिंदी है।
1: हुणे तुसी सुनिया अज दा ज्ञान अमृत। आओ हुण सरवण करदे हां भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

कहिंदे ने कि ज्ञान दा खजाना जिन्ना वंडिया जावे उन्ना ही वधदा है। जिंदगी विच धन दौलत दे नाल नाल ज्ञान अते चंगे संस्कारां दा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सानू सही राह विखाउंदे ने। आओ इसे भगती भाव नाल सरवण करिए अगला भजन।

0: हुने तुसी सर्वन कार्य सी भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स डीआरएम 864 किलोहर्ट्स एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स आप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी घड़ी मुताबक 6:30 हो रहे ने। आओ हुण तुहानू सुनाईए प्रोग्राम खेतीबाड़ी
1: खेतीबाड़ी।

हुने तुसे सुन रहे से प्रोग्राम खेती बाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसे साड़े प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुन मानस कान प्रोग्राम च तुसे सर्वन करोगे रामचरित मानस दी लड़ीवार पाठ दी 224वीं कड़ी।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण

करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतनी स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

मानस गान प्रोग्राम च तुसी सर्वन कर रहे से रामचरित मानस दी लड़ीवार पाठ दी 224वीं कड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। परिचय

आओ हुण तुहानू जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दी। सवेरे 7:02 ते पेश किया जाएगा प्रोग्राम सोहनी सवेर, पंजाबी फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम महक पंजाब दी। तुसी सुनोगे सवेरे 8:40 ते।

स्वरिन आवाज के दो मिनट ते गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम पेश कीता जावेगा। शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना 9:30 बजे पेश कीता जावेगा। इस प्रोग्राम च आज तुसी कलाकार उस्ताद अमीर खान पासों शास्त्रीय गायन राग मियां की तोड़ी सुनोगे। सवेरे 10:02 बजे ते तुसी साडा लाइव फोन इन प्रोग्राम सुनोगे हलो फरमाइश। तमक जलंधर पिंडी प्रोग्राम सवेरे 11:05 बजे ते पेश कीता जावेगा। 12:05 बजे ते समा रहेगा प्रोग्राम वस्ते वेड़े दा। इस प्रोग्राम च तुसी दूजे नराते बारे दिती जानकारी सुनोगे ते मेहमान बरूहा ते प्रोग्राम च नीलम ते शिव कुमार गुप्ता पासो दिती जानकारी सुनोगे। फौजी वीराली प्रोग्राम दोपहर 1:15 बजे पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम के तहत आज तुसी देवराज ते साथियां पासो माता दी पेटा सुनोगे। साड़ी दूजी सभा च शाम 4:02 बजे ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सर्वन करोगे। शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे गुरवानी विचार। देहाती प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे शाम 6:30 बजे अते इस विच आज हाड़ी लई हरे चारे विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी ते इस बाबत जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल कपूर। इस दरानी शाम 7:45 बजे ते पेश कीता जावेगा प्रोग्राम विविधा काव्य पाठ। इस चाज तुसी वीना विज दी कविता सुनोगे। रात 8:00 बजे तुसी सुनोगे हिंदी गीत। 8:10 बजे ते जन सेवा तो देश सेवा तक प्रोग्राम तुसी सुनोगे। इस प्रोग्राम दे तहत आज महाकुंभ तो खेलो इंडिया विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी। इस दिन आली रात 8:40 बजे ते तुसी पंजाबी गीत सुन सकोगे। रात 9:00 बजे तुसी सुनोगे न्यूज 8:09। 9:15 बजे स्पॉटलाइट। ये दोनों प्रोग्राम साडे दिल्ली केंद्र तो प्रसारित कीते जाणगे। इस दिन आली रात 9:30 बजे तुसी सुनोगे पंजाबी नाटक सदमा जिस दे लेखक ने सतीश टंडन। रात 10:02 बजे ते तुसी सुनोगे कवालियां ते रात 10:30 बजे ते प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश पेश कीता जावेगा। ऐसन अज रात तक प्रसारित कीते जान वाले प्रोग्रामा दा वीरवा हुन तो बस कुछ ही पलां च तुसी साडी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: चेन्नईपत्तन विकास परियोजना अमृत भारत स्थानक योजनाया अंतर्गतम रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमस्ति। सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः संपर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति, उद्योग व्यापारयोः विस्तारः संपत्स्यते, राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रा संस्मरता श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकार प्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केन्द्रम् अपि राष्ट्राय समर्पितम्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्ड अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900,000,000 रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिंदू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयंती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमंत्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट्स का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 times बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 times बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्ण रीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनं, अन्तर्जाल सेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहने बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरण सम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियोज दी कड़ी मुताबक सवेर दे 7 बज रहे ने। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दे नौजवानां विच दुनिया च उभर रहियां चुनौतियां दे हल मुहैया करवाउण दी प्रतिभा अते समर्था मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण ढंग नाल इकत्तर होण वाले लोकां नूं गैर कानूनी ढंग नाल हिरासत विच ना लैण अते आवाजाई नूं निर्विघन जारी रखण दे निर्देश दित्ते ने। भारत ने बीते दिने नवी दिल्ली विच वापरियां घटनावां बारे मनुखी अधिकारां बारे हाई कमिश्नर दे दफ्तर दियां टिप्पणियां नूं देश दे अंदरूनी मामलियां विच दखल अंदाजी

वाजवा फिल्म परमानु जो ज्योतिका डांगरी ते कीर्ति सरगथा दी आवाज तुसी इंजॉय कर रहे सी जी गीत ते हुन प्रोग्राम च अगे वधदे आ ते गल करदे आ अज दी दिन नाल जुड़ी।

बिल्कुल जी, सतिंदर सरताज की आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे सी जी, बहुत प्यारा जिहा गीत ते असी गल कर रहे सी। अज दा दिन जिहड़ा 12 अक्तूबर है, इस दिन दे नाल जुड़ियां खास जानकारी दी। ते अज दा 12 अक्तूबर जिहड़ा दिन है, वो एक होर अहम गल साडा ध्यान जिहड़ा ना वह दवाउंदा है, ते वो है जी साडे जोड़ां दी सेहत। अज मनाया जाता है जी अज के दिन विश्व गठिया दिवस, जिसका मकसद है गठिया अते जोड़ां नाल जुड़िया जुड़िया बीमारियां उस बारे अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। अज की भज दौड़ वाली जिहड़ी जिंदगी है ना, इस विच असीं अपने कम्मां नूं तां पहल दे दिंदे आ, पर कई बार अपनी सेहत नूं ही पिछे छड्ड दिंदे आ। घंटियां तक कुर्सी ते बैठे रहना, शरीरक जिहड़ी एक्सरसाइज है उहदे लई असीं समय नहीं कढ पाउंदे, ते जिहड़े जोड़ां दे दर्द ने उहनूं इह सोच के असीं इगनोर कर दिंदे आ, नज़रअंदाज़ कर दिंदे आ कि शायद थकावट होवेगी। इह आदतां साडे लई बिल्कुल भी ठीक नहीं हैगियां जी। गठिया सिर्फ वधदी उम्र नाल जुड़ी समस्या नहीं है, इह बच्चियां ते नौजवानां नूं वी कहा जांदा है कि हो सकदी है। जे जोड़ां विच लगातार दर्द है, स्वेलिंग है, सोज है, या फिर अकड़न महसूस होवे ना, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए है। रोजाना

0: वाह जी वाह, गुरदास मान जी दे इस गीत ने प्रोग्राम च ते तुहाडे दिन च आई होप रौनक लगा दित्ती होवेगी। ते प्रोग्राम च हुण अग्गे वधदे आ, ते सच दस्सिओ सारे जिहड़े साडे लिसनर्स ने कि कल जिहड़ा एतवार सी, कल दा जिहड़ा दिन बीतिआ, उस च होई जिहड़ी बारिश ने, बारिश तो बाद मौसम च जिहड़ी तब्दीली आई उहने अज दी जिहड़ी सवेर आ ना उहनू कुझ होर ही सुहावना बना दित्ता। हवा विच हल्की जिहड़ी ठंडक महसूस होण लग पई है, ते अक्तूबर दा इह जिहड़ा बदलदा मौसम है ना, इह सर्दियां दी आमद दा एहसास करवा रहा है। पर जी मौसम दी इस तब्दीली दे नाल एक जरूरी जानकारी भी तुहाडे नाल हुण सांझी कर लईए, जो है जी मौसम बारे कि आने वाले दिनां च ते अज दा मौसम, मौसम विभाग वल्लों ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗਰਜ ਚਮਕ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ख्याल भी करना है जी, क्योंकि जदों जदों मौसम दे विच चेंज हुंदा है ते उदों उदों साडे जिहड़ी बॉडी है उहदे च भी चेंजेस हुंदे ने। ते क्योंकि हुण जदों मौसम बदलेगा तापमान च गिरावट होवेगी, ते सवेरे ते शाम दे समय खास तौर ते ध्यान रखण दी लोड़ है। ते अगों फेस्टिव सीजनस भी होणगे, ते जिहड़ी हवा दी गुणवत्ता है उहदा भी काफ़ी फर्क पवेगा। ते जी असी मौसम दा आनंद भी माणना है ते अपनी सेहत दा ख्याल भी रखना है। फिलहाल प्रोग्राम च इसी तरह जानकारी तुहाडे नाल सांझी करते रहांगे। लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम दी आवाज़ च एंजॉय कर लो ये गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। 8:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और

0: राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी ने
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
3: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
3: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी

0: सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123341-01123417। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2

0: एक की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed after overcrowded boat capsized off Djibouti coast. And in cricket, India beat West Indies by 14 runs in the third T20 international to take a 2-1 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of the Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possesses the talent and the potential to provide them.
5: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
4: द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज द करंट ईरा।

प्रोग्राम महक पंजाब दी च आखिरी गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म पिंकी मोगे वाली चो कमल खान दी आवाज़ च गीत इंजॉय करो।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। होम पेश है प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल।

गाता रहे मेरा दिल, ए प्रोग्राम जिथे गल हुंदी है फिल्मी संगीत दी, उन्हां गीतां दी जिन्हां नाल जुड़िया हुंदियां ने साडियां यादां, साडे जज़्बात अते जिंदगी दे कुछ खूबसूरत पल। अज दे इस प्रोग्राम च असीं गल करांगे सन 1998 च रिलीज हुई एक अजिही फिल्म दी जिसने दोस्ती, प्यार अते रिश्ते नूं एक वक्रे अंदाज विच पेश किया। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इस फिल्म च शाहरुख खान, काजोल अते रानी मुखर्जी दी अहम भूमिका सी, बहुत खूबसूरत पहचान दिती। ते इस फिल्म की जेकर असी गल करिए एक बहुत ही मशहूर ते जबरदस्त फिल्म सी है। इस फिल्म के निर्देशक करण जौहर सन, उन्हां दी बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म सी। शाहरुख खान ने इस फिल्म च राहुल दा किरदार निभाया, काजोल ने अंजलि ते रानी मुखर्जी ने टीना दा किरदार निभाया। इस फिल्म दा जिहड़ा गीत सी, जिहड़े जिन्ने भी गीत सी, वह सारे उस टाइम दे सुपर डुपर हिट गीत सी। ते फिर इस प्रोग्राम च इस सफर की शुरुआत करदे हां ते सुनदे हां फिल्म दा एक खूबसूरत

बिल्कुल जी, बहुत सुना गीत इंजॉय कर रहे थे तो फिल्म का। तो हम इस फिल्म के जोड़ी कहानी है वो अगे बढ़ती है। तो इस फिल्म च हम गल करते हैं रानी मुखर्जी की, जिन्होंने फिल्म में टीना का किरदार जोड़ा उन्हें पाया। तो टीना तो राहुल की जोड़ी जिंदगी जो एंट्री करते हैं तो प्यार जोड़ा विआह तक पहुँच जाता है। तो पर कहानी भावुक मोड़ उदों आता जो टीना अपनी धी अंजनी जन्म देने तो बाद दुनिया तो रुखसत हो जाती है। तो फिर वो एक चिट्ठी लिख के जाती है जो कि काफ़ी इमोशनल सी। तो इस तरह इस कहानी की जिहड़ी उन्होंने बेटी है वो इस छोटी जी बच्चे की कोशिश होंगी है कि उन्होंने मिलाया जाए। तो फिर यह कहानी अगे बढ़ती है तो एक होर खूबसूरत मोड़ तक पहुँच जाती है। ते गीत इस फिल्म दे बहुत शानदार सी। ते कुछ स्टाइल उस वेले काफ़ी ज़्यादा हिट हुए, शाहरुख खान की जिहड़ी कूल चेन सी जिहड़ी उन्होंने उस फिल्म च पाई सी वो काफ़ी ज़्यादा उस वेले ट्रेंड कीती। ते इस फिल्म दे नाल होर भी जिहड़े फैक्ट्स ने जुड़े वो असीं तुहाडे नाल सांझे करांगे, लेकिन फिलहाल इंजॉय करो ये गीत।

0: हो रहे तुसी सुन रहे से शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार उस्ताद अमीर खान पासों शास्त्रीय गायन राग मियां की तुंडी सुनिया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अती DDHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स आप राही ते न्यूज ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। इस वेले साडे स्टूडियोज दी घड़ी मुताबक सवेर दे 10 बज रहे ने ते हुण पेश ने अज दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दे नौजवानां विच दुनिया दीआं उभरदीआं चुनौतियां लई नवे अते बेहतर हल प्रदान करने की समर्था है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण ढंग नाल एकत्र होने वाले लोगों नूं गैर कानूनी ढंग नाल हिरासत विच ना लैण अते आवाजाई नूं निर्विघन जारी रखने के निर्देश दिते ने। सऊदी अरब दे रियाद हवाई अड्डे ते 2 दिनों विच होए दूजे हमले विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है अते 11 होर जख्मी हो गए ने। अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस अते यूक्रेन तुरंत प्रभाव नाल ऊर्जा सहूलतां ते हमले रोकण लई सहमत हो गए ने। पूर्वी अफ्रीका विच जिबूती तट नेड़े एक किश्ती पलटन कारण 139 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब दे खुराक सिविल सप्लाई अते खपतकार मामलियां बारे मंत्री लालचंद कटारू चक ने बठिंडा दी दाणा मंडी दा दौरा करके झोने दी खरीद संबंधी प्रबंधा दा जायजा लिया। माइनिंग विभाग ने जिला रूपनगर विच गैर कानूनी माइनिंग च शामिल 5 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार करके 5 वाहनां ते मशीनां नूं जब्त कीता। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश अते जम्मू कश्मीर दे कारीगरां दी सहूलत लई एक डिजिटल मार्केट प्लेस कला अनुभव .com दी शुरुआत। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते हिमाचल प्रदेश विच बिजली लिशकण नाल तेज हवावां चलण दी संभावना जताई है अते भारत ने तीजे 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच विच वेस्टइंडीज नूं 14 दौड़ां नाल हरा के 5 मैचां दी लड़ी विच 2-1 दी लीड ले लई है। ऐ सन अज दीआं मुख खबरां।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सुबह

0: वाजिवा जुलम के पुकार फिल्म जो मोहम्मद रफी साहब ते चंद्रानी मुखर्जी दी आवाज गीत तुसी एंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम हलो फरमाइश आओ जानते हैं हुन अगली फरमाइश कौन लेके आए ने हलो
1: हलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी सत श्री अकाल जी
0: हाँ जी कौन

0: उदित नारायण की आवाज च बहुत ही शानदार गीत फिल्म गदर एक प्रेम कहानी का तुसी सुनिया। आओ जानते हैं हुन अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
1: हेलो मानवी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी?
1: मानवी सुखबीर सिंह छाजली बोल रहे हैं संगरूर को।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा।
1: शुक्रिया मानवी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: हाँ जी केड़ा गीत सुनोगे जी?
1: मैडम दिल
0: चले मूवी का
1: लगा दो जी, हो नहीं सकता।
0: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दिया तुम्हारी फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ठीक है मैडम।

0: जानकारी लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करो व सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: जिस तरह तुम बताइए कि जो मेरी जी खरीद है वो 1 अक्टूबर

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: प्रोग्राम हेलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो ते इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता जी तुहाडे नाल। आओ जानदे हां प्रोग्राम च हुन अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
3: हेलो शुभता बहन जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, होर की हाल चाल ने?
1: ठीक है मेरी बहन, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो बहने?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक जी।
1: अच्छा जी, सानू महाराज ठीक ही रखे जी। बहुत वधिया प्रोग्राम चल रहा है, लंबा साल हो गया जी प्रोग्राम सुन रहे नूं।
0: ठीक है जी।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, ते फिर केड़ा गीत सुनना अज, फरमाइश की है
1: तुहाडी? बहन जी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है जी, फिल्म है सादो कर साहब, गाने के बोल है 100 बार जन्म लेंगे।
0: ठीक है जी, जरूर पूरी करने हैं, तुम्हारी फरमाइश, बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: कॉल करने।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: फिल्म चो लता मंगेशकर की आवाज चो तुसे एंजॉय कर रहे से जी गीत आ जानते हैं प्रोग्राम चो अगली फरमाइश कौन लेके आए ने हेलो
1: हेलो मैम
0: सत श्री अकाल जी हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी
1: चलो
0: अज लग गई है फिर खुश हो जाओ ठीक है जी फिर ऐसी खुशी च गीत दसो के सुनोगे फरमाइश की है फरमाइश असी जरूर पूरी कर दे सड़क फिल्म चो अभिजीत अनुराधा पौडवाल की आवाज एंजॉय करो ये गीत

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वह 1 अक्तूबर

0: खरीद ले पंजाब दिया मंडिया विच सारे प्रबंध कीते हन ताकि किसान 17% तक दी नमी वाले झोने दी कीमत तुरंत पा सकन
1: सुक्का झोना लियाओ दाने दाने दी कीमत पाओ
2: प्रोग्राम हलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित कीता जा रहा है आओ जानदे आ प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने हलो
3: हेलो नमस्कार मैडम
2: जी नमस्कार जी हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी
3: मैं विजय कुमार खटक बोल रहा जिला फरीदकोट जनसर जत्तों मंडी तो
2: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा
3: तुहाडा मैडम जी
2: हाँ जी केड़ी फरमाइश है केड़ा गीत सुनोगे
3: फिल्म मैं जी माता नराते चली जाते फिल्म मैं जी अवतार गाने ने बोला चलो बुलावा आया माता ने बुलाए
2: वाह जी वाह बहुत सोहना गीत बहुत सोहनी फरमाइश तुहाडी है ते तुहानू भी नवरात्रियां दी लख लख शुभकामनावां बिल्कुल जी माता रानी सब ते कृपा करे बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई थैंक यू लो जी इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करदे हां चंचल ते महेंद्र कपूर ते आशा भोसले दी आवाज़ च

0: अवतार फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी, आओ जानते हैं प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
1: हेलो मैडम जी, राम राम।
0: राम राम जी, हाँ जी, कौन बोल रही है जी?
1: हाँ जी, श्रवण कुमार रणवा गांव रामवाली जिला फाजिलका पंजाब बोले जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम चो तुहाडा।
1: हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे तुसी?
1: गीत मैडम जी अल्लाह रखा फिल्म सुनाओ जी, किस रौफ की फिल्म है।
0: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें तुम्हारी फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
1: गेप गा लिए कॉल मिलानी चाहिए, श्रोता मिलती बेनती है थोड़ी।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: मिली मिलानी चाहिए जी।
0: ठीक है जी।

ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई, जरूर पूरी कर दें थोड़ी फरमाइश। मुझे इन्हों की फरमाइश के नाल ही इस प्रोग्राम चो हम मैनू अपने दोस्त शुभता नूं तुसी इजाजत दो, जुड़े रहो आकाशवाणी रेडियो के नाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरुनानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 घायल हुए थे। हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्र क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को

0: कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बिजली स्टेशनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयले का पुनर्वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। सारे स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते ने, नाल दे नाल न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी लैके हाजिर तुहाडे सारियां दी अपनी दीपाली वधवा वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी।

और मेन बाजार हठूर तहसील जगराउन जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, राजेंद्र कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा भी। रम्मी हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना तो इन्होंने सुनेहा भेजिया जी। और मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलालदीबाल जिला लुधियाना तो इन्होंने भी सुनेहा पूरे समय नाल भेजता है। मखू तो बिल्ला बजाज हैपी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज भी साढ़े को समय नाल पहुंचते ने। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो क्रियांश बगड़िया, योगेश ओम रजत ते बेबी गरिमा बगड़िया एवी अपने सुनेहे नाल पहुंच गए ने जी। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभी, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गांव कमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश टुकिया, प्रमिला, ज्योति, अमना, सायना, शिवम,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी च अगला सुनेहा पढ़न जा रही हां। गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवांशहर तो सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा संधू, पोती और मैक्स। शुक्रिया जी सुरिंदर संधू जी दा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सुनेहा फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। बाघा पुराना तो भी पहुंच गए जी अपने सुनेहे दे नाल। सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर, पोतरा तेग फतेह सिंह रखरा, पोतरी जसगुन रखरा और ये पूरे परिवार दे नाल आंदे ने। ये बड़ी खुशी वाली गल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाघा पुराना वालियां दा, सतनाम सिंह जी दा। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च पिंड फुल्लो मिठी बठिंडा तो सानू सत श्री अकाल भेज रहे ने हरजस सिंह ढिल्लों, पोतरा दपिंदर सिंह और पोतरा गुरवारी सिंह ढिल्लों, भोला सिंह बैणीवाल, बलकोर सिंह सिद्धू और इन्हां दे सारे परिवार दे मैंबर साडे कोल अपने सुनेहे नाल। और अगला सुनेहा मदन मोहन लहर, सरबजीत, संजू, नीतिका, अजय, एंजल, लाडला पोता, अर्नव लहर भी, ये सारे जिहड़े पोतरे पोतरियां नाल आंदे हो ना तुसी, ये तो साडा भी दिल बाग बाग करके जांदे हो। और इन्हां ने सानू सुनेहा कित्थों भेजे है भी सुन लो। मनीला फिलीपीन तो गंगसर बाजार करतारपुर वाले, बिल्कुल जी करतारपुर वाले ने वैसे, पर मनीला फिलीपीन तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया जी तहे दिल तो। और अगले सुनेहे दे नाल साढ़े तक अपना सुनेहा भेजा है एस एम जावेद गुमला झारखंड तो। अवतार सिंह पन्नू पिंड मथोला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो इन्हों का सुनेहा आया। अर्शदीप सुरजीत सिंह अमरकोट तो इन्होंने सुनेहा भेजा जी। पिंड चंदमारी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिड्डा, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या इन्होंने भी मैसेज भेजा है। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रीतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज का भी सुनेहा आ गया। पिंड बिल्लीमार जलालाबाद तो सानू नाम भेजे ने प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा, अरमान, राकेश, ममता, अनन्या और अनुष्का खुराना ने। अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचे जी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो इन्होंने सुनेहा भेजा है। प्रोग्राम च अगला सुनेहा कुड़ी सैक्टर 5 सूर्या नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। और लच्छनपुर छत्तीसगढ़ तो विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू का भी सुनेहा आया। गांव खारा खेड़ा वार्ड नंबर 13 सरकारी स्कूल दे कोल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ संगरिया राजस्थान तो पूरा पता लग गया नहीं जी तुहानू, ठीक है हुण नाम सुन लो। हरबंस सिंह

जगनदीप सिंह, गुरदीप सिंह, मलकीत कौर। अगला सुनेहा प्रोग्राम चरण धीर बांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम वीरेन मनकीरत ते मनराज। इन्होंने सुनेहा भेजा जी गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर तो। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनूर सिंह, डॉक्टर राम कुमार नारंग, बलदेव सिंह भगवानगढ़ भुखिया तो, पिंड तैदाखाना लोगर ठाकुरां वाला जिला फिरोजपुर तो इन्होंने सुनेहा भेजा जी। जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा। और गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो रजिंदर कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन ते सारे परिवार दे साथी मैंबर इन्हां दे पहुंचे ने। तमक जलंधर पेंदी चलिका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सिंह, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी का भी सुनेहा मिल गया जी। गीत दी फरमाइश है कुलदीप माणक ते साथ निभा रहे ने जैजी बी। और इन्हां दे नाल एक तो मैसेज होर शामिल कर दिए, इन्हां दे नाल एक दो मैसेज जिहड़े होर शामिल कर रहे हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा, अमित कुमार हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। और पिंड शेरगढ़ मलोट तो तरसेम सिंह सैकटरी, गुरसिमरन वीर कौर, हुसन मान, जसवीर कौर, सरदार बलकरन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी तुहाडे सारिआं दी रली मिली पसंद करन जा रही हां पूरी तुहाडी ही फरमाइशां ते गीत लगा रही हां अज प्रोग्राम दे विच। ते फिर सुनो तुहाडी सारिआं दी पसंद।

0: प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी। अगले सुनेहे दे नाल पिंड झमका अमृतसर तों योगी टेलर दविंदर सिंह राणा राजा सुखा जोगी ते अमन पलक सोनू सोनी और रैंपी राजबीर इन्हां दा भी सुनेहा साडे तक पहुंच चुका है जी। कृष्ण लाल सिमरी देवी मनोज कुमार पुष्पा राणी शैलेंद्र कुमार पिंड सावन खेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया जी बाबू सिंह तिमान बलजिंदर कौर रवनीत निशु और भुपिंदर मुक्सर पंजाब तो और अगले सुनेहे दे नाल मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल प्रभजोत और मनजोत सप्पल दा कुलवंत कुमार सुनीता फलक कशिश सारा ही काठपाल परिवार पिंड बनवाला हनुमंता फाजिलका तो इन्होंने सुनेहा भेजे। गुरचरण सिंह गुरलाल बीर सिंह परवान सिंह हरदया सिंह ए फाजिलका पिंड डब वाला कला तो इन्होंने सुनेहा भेजे जी। अगले सुनेहे दे नाल पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो मुहम्मद सादिक मुश्ताक मुहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गोड़ मोहम्मद शादाब खत्री जामा मस्जिद रोड हाजी इसहाक लोलामानी मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी इन्होंने भी सुनेहा भेजा है। और अगला सुनेहा सुखपाल सिंह स्वर्ण कौर लवप्रीत सिंह जसप्रीत सिंह और रुपिंदर कौर नेशनल कलोनी बठिंडा तो इन्होंने साढ़े तक अपना सुनेहा भेजा जी। थोड़े सारयां दी रली मिली पसंद पेश करन जा रही हूँ एमी विर्क और ज्योतिका टंगड़ी की आवाज़ च धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम का आखिरी गीत। इस गीत दे नाल मैनू यानी दीपाली नू प्रोग्राम खत्म करन दी इजाजत दिओ पर तुसी किते नहीं जाना आकाशवाणी दे वखो वख सिलसिला नाल 4:30 बजे तक मेरे नाल बने रहना।
1: हां जी
2: बीबा जी ये गाना तुसी गा रहे सी?
1: नहीं जी रूप ते बसंत गा रही सी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ 35 ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और

0: संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह आधे प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वास्ते विड़े।

0: ने ओ शांती दा स्वरूप ने ओ त्याग दी संकल्प दी दृढ़ इरादे दी प्रतीक ने जो अपने इस संकल्प दे नाल बहुत कुछ कर सकदियां ने ते एक परिवार दी मजबूत नींह रखदियां ने ते साडा साडे जीवन दे विच उहनां दा बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल भी हुंदा है। सो देखो जी ये जो नवरात्रे चलणगे 9 दिन इस विच जिन्हां ने भी ये व्रत धारण कीते होए ने वह महसूस कर सकते हैं कि जीवन दे विच जो भोजन की महत्ता है वह किन्नी जरूरी है उसनू समझना किन्ना जरूरी है ते नाल ही नाल यह भी जरूरी है जरूरी है कि जो नराते सानू सिखाते हैं कि भोजन तो उपर उठ के भी जो असी दुनियावी या अध्यात्मिक चीज़ा महसूस करनिया ने उन्होंने भी असी जानना है। सो कुल मिला के सानू बहुत कुछ सिखाते हैं नवराते तो क्यों ना हुण इन्हां नवरात्या की गलबात तो बाद एक पेट भी सरवण करिए।
1: बिल्कुल जी।

0: जेकर पछाण जा पते विच कोई बदलाव नहीं है ता अपने बैंक जा एटीएम जा बिजनेस कोरेस्पोंडेंट यानी बीसी कोल जाओ जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर राही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जा पत्तर राही उसकी स्वै घोषणा करो ते जेकर कोई बदलाव है ता पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दिखाओ खाता कार्यशील रखो अते बैंकिंग सेवावां दा लाभ उठाओ अपना केवाईसी अपडेट करवाउण लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा ते जाओ।
1: आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो सुचेत रहो।
3: जिस तरह तुहानूं पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर तो

0: एक बार जो नुकसान हो गया सारा रिकॉर्ड ही खत्म हो गया फिर तो।
1: जी
0: लेकिन हुण जिहड़ा इह एडवांसमेंट ऑफ टैक्नोलॉजी हुई है उहदे नाल बहुत मॉडर्न सिस्टम आ गए ने, जिन्हें भी ऑपरेशंस होंदियां ने ब्रांचेज दे विच बैंकिंग दियां उहदा
1: जी
0: कंट्रोल कितें होर रहेगा।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: जी
0: जिथे भी थोड़ा डाटा सेंटर कहने असीं उहनूं, सारियां ब्रांचां दा कंट्रोल उत्थे है। उस तों भी इलावा उन्होंने साइमल्टेनियसली एक सेंटर होर बनाया हुआ है, भी बाई चांस जिहड़ा मेन सेंटर थोड़ा उत्थे कुछ भी हो जाए, कोई अग लग जाए, कुछ पानी आ जाए, हड़ आ जाए, जिदा पंजाब पिछे आए ने, नुकसान हो जाए तो बैंक का डाटा कितने खराब ना हो जाए, तो एक सेंटर होर बनाया। फॉरन कंट्री बनाते हैं, साढ़े बैंक का इदा सी फॉरन कंट्री हों, तो डाटा उत्थे इंटैक्ट रहता है ना जी। सो ये सिस्टम बहुत वधिया लगता हूँ। तो दूसरी गल है कि जेडे हूँ असी पेमेंट्स करनिया ने ज पैसे कढ़ाने ने जमा कराने ने, ये सारा असी खुद ही कर सकते, बैंक भी जाने की लोड़ नहीं पैंदी,
1: ऑनलाइन
0: बाहर
1: हो
0: मशीन्स
1: गया।
0: लगी हुई ने। हाँ
1: जी
0: जी,
1: जी जी जी
0: पेमेंट्स करनी ऑनलाइन पेमेंट्स हो
1: जी
0: जाए
1: जी जी
0: ने,
1: जी
0: बैंक
1: जी
0: जाने की बहुत घट जरूरत
1: जी
0: पैंदी
1: जी
0: है।
1: ओ नीलम जी कहिंदे ने ना कि हुण बैंक जाओ ना, तेरे को पैसे कढ़ाने तो फट देने, कहिंदे लियाओ तुहाडे ऐप डाउनलोड कर
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: दईए।
2: हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कहते हो।
1: जी
2: उहदे नाल इक तां काम भी जल्दी हो जांदा है और कस्टमर घर बैठे भी हुण तां अपने सारे काम करन लग पए ने, बैंक जाण दी लोड़ ही नहीं आपां
1: जी
2: नूं।
1: जी जी घूमदे फिरदे हो, जदों जॉब करते सी उदों इन्ना मौका नहीं सी मिलता, पर उदां वैसे घूमदे फिरदे सी, ते कई वारी हुंदा सी कि तुसीं दोनों ने इक्को टाइम ते जाना, इक्को टाइम ते आना, बहुत सारे फंक्शंस भी रह जांदे होणगे।
2: हाँ जी मैम, वो तो रह जाते सी, बैंक साड़ी प्रायोरिटी होंदी सी। जब तक बैंक का इदा रूटीन होंदा है कि सवेर का जब तक शाम को हिसाब किताब ना मिले, असी वो छोड़ के बंद करके बीच छोड़ के नहीं जा सकते।
1: भावें 5 दे 6 भी बजन।
2: मैडम रात के 12 भी बजन,
1: अच्छा।
2: उदा 12-12 बजे भी कई बार आए हैं आप इदा ना।
1: कई बारी गजट छुट्टियां भी कैंसल करनिया पईआं होणगीआं।
0: हाँ जी,
2: हाँ
0: नहीं
2: जी
0: रूटीन च भी कई बार संडे नूं भी बैंक जाना पैंदा सी, स्पैशली जदों क्लोजिंग हुंदी सी, क्लोजिंग दे दिनां विच तां बैंक जांदे सीगे, छुट्टी वाले दिन भी
1: जी
0: 6-7 दा नॉर्मल रूटीन
1: ओ
0: सीगा। हालांकि टाइम तां 5 बजे दा ही हुंदा है,
1: हाँ जी
0: पर जदों कंप्यूटराइजेशन हुई है स्पैशली 2006 दे विच, उदों लैन सिस्टम आया, मीनस ब्रांच आपस कनैक्ट कीतियां ने, क्योंकि वो बिल्कुल नवा सिस्टम सीगा, स्टाफ नूं उहदी जानकारी नहीं सीगी, ते उस टाइम तो रात 11-12 भी बजन दे सीगे। लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल सैट हो गया, हुण बहुत ही स्मूथ है काम,
1: जी
0: बहुत स्मूथ है। जिहड़ा कि असीं 6 जां 7 बजे फ्री हुंदे सीगे, हुण जे चाहो तो बैंक वाले 5 बजे वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ
1: बिल्कुल
0: जी हाँ जी
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: जी
1: कई बारी तो उन्होंने 4:30 बजे
0: हाँ
1: काम
0: जी
1: मुकाया होंदा सी ना,
0: बिल्कुल जी
1: हाजरी
0: बिल्कुल
1: लानी है,
0: बिल्कुल
1: 5 बजे तां रुके
0: तां
1: हुंदे
0: रुके
1: ना।
0: हुंदे, बिल्कुल सही गल
1: इस
0: है।
1: दरमियान बच्चे कितने अणगौले तां नहीं गए?
2: नहीं इस बाई चांस साढ़े ना नहीं होया, क्योंकि मेरे जेडे मदर सीगे उन्होंने सानू बहुत हेल्प रही, वो नज़दीक ही रहिंदे सीगे, वो बच्चों की उन्होंने पूरी टेक केयर की, तो
1: जी
2: कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं
1: जी
2: आई।
1: नहीं तुसी क्या ना कि अलग अलग पोस्टिंग देखियां तुसी,
2: हाँ जी
1: बच्चे तो नाल ही जांदे होणगे।
2: हाँ, जदों साडियां पोस्टिंग्स हुई ना बाई चांस, उदों बच्चे मतलब बड़े हो चुके सीगे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: हाँ
1: अच्छा
2: जी,
1: अपना
2: ते
1: ख्याल आप रख सकदे
2: आप
1: सीगे।
2: रख सकते
1: जी
2: एक
1: जी
2: बच्चे होने तो पहला एक
1: कदी कदी बच्चों की शिकायत तो होंगी होएगी कि मम्मी पापा तुसी 16 दिन तो बैंक ही रहिंदे सीगे, सानू थोड़ा जा घट समा मिलिया।
2: नहीं, बच्चे नूं उदां ही आदत पै गई सी, उल्टा असी घर रहिंदे सी, उन्हां नूं इदां लगदा सीगा कि
1: ओ
2: अज
1: अजे घर क्यों है?
2: अज घर क्यों
1: वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा तुहाडे दोनों च रोसे गिले होंदे कदी आपस च? रहण दे हो, हुण कदी नहीं होया?
0: नहीं माड़ा मोटा हो सकता है, लेकिन कदी कोई ज्यादा नहीं होया।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं,
0: नहीं ऐसा नहीं,
1: ऐसा
0: ये नौबत नहीं आई कदी।
1: चलो अपन नीलम जी नूं सवाल पूछते हैं,
0: हाँ जी
1: कदी दोनों विचों जे गुस्से दी आपां माप तोल देखिए, ज्यादा गुस्सा किनू आंदा है?
2: ज्यादा गुस्सा तो इन्हां नूं ही आंदा है,
1: ओ
2: इन्हां दी आवाज़ बहुत उच्ची है।
1: अच्छा
2: मैं आवाज़ तो ही डर जाती
1: हूँ। तुहाड्यां दी ते आंदा ते फिर जांदा किदां?
2: अपे चले जाता, कहना नहीं पैंदा।
1: अच्छा
2: हाँ
1: वो बेचारे थोड़ी इन सोहनी जी प्यारी जी भोली जी शक्ल दे के उदो ही डर जाते होने कि ताए किते रोणी ना लग पए मेरी उच्ची आवाज सुन के, होया इदा?
2: हाँ नहीं इदा नहीं होया, क्योंकि साड़ी एक गल है कि जदों भी कभी लड़ाई हुई पड़ोसियों ने नहीं सुनी, मतलब साड़ी इन्नी थोड़ी जी होंदी है,
1: होई है।
2: हाँ एक आवाज आई दूसरे की घट रही ते बस पड़ोसियों तक नहीं जाती।
1: वैसे मजा ही तो आंदा है,
2: हाँ जी
1: एक थोड़ा घट वाला हो ते एक थोड़ा ज्यादा वाला हो
2: ते
1: तालमेल बैठ जाते, दोवे इको जे होन ते कहंदे ने कि भांडे खड़कदे तां चंगे लगदे ते चिब पई नहीं चंगे लगदे।
2: सही गल सी
1: जी जी जी जी, बड़ी मजेदार गल है। वैसे तुसी इह नहीं मन्ने मैनू गुस्सा ज्यादा आंदा जां रोसा गिला, तुसी दस दिता कि इन्हां नूं गुस्सा ज्यादा आंदा, ओह चले भी आपे ही जांदा। गुस्सा आंदा केड़ी गल्लों सीगा?
0: गुस्सा आंदा कि गलों से मेरे जी लाइफ है बहुत ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन हैगी है,
1: जी जी जी।
0: जे कोई कमी रह जाए
1: हाँ
0: तो
1: कई
0: बार

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी लई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट ते विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर

0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत है। देखो ये प्रोग्राम साडा जानकारियां मनोरंजन दा एक बहुत ही खूबसूरत सुमेल हुंदा है जो असीं हर रोज़ पेश करते हैं।
1: बिल्कुल जी, ते साडे स्रोते साडियां भैणां भी साडा इंतजार करदियां ने ते असीं भी उहनां दा इंतजार करदे हां कदों साडा आपस विच गल्लबात शुरू होए, कदों सारियां जानकारियां उहनां तक पहुंचन और इन्ना सारा एंटरटेनमेंट और खूबसूरत गीत संगीत भी।
0: कल फिर इह सिलसिला अपने वेले हाजिर होएगा, नवें साथी होणगे, नवें सिलसिले होणगे। ते अज कोमल ये प्रोग्राम खत्म करन दी अपने स्रोतियां तों लईए जी फिर इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों तकनीक से शामिल है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शेल वॉटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मिडीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दुपहर लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी देवराज ते साथियां वल्लों माता दियां भेंटां सरवण करोगे। दूजी सभा च 4 दियां मुख खबरां तो बाद 4:02 ते आनंद माणोगे प्रोग्राम सदा बहार गीतां दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम दा समा रहेगा शाम 6:30। अज इस विच कम दियां गल्लां, हाड़ी लई हरे चारे, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल कपूर। इस तो इलावा कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। ₹7:10 ते साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जन सेवा से देश सेवा। ₹7:45 आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम सुनोगे विविधा। विविधा तहत आज तुसी आकाशवाणी के संग्रहालय से राम मनोहर लोहिया के संस्मरण ए सुनोगे। इस तो बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। ₹8 तुसी हिंदी गीत सुनोगे। ₹8:10 ते सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा तक खेल महाकुंभ तो खेलो इंडिया। ₹8:30 का समा रहेगा पंजाबी खबरां दा। ₹8:40 ते तुसी पंजाबी गीतां दा लुत्फ उठाओगे। साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे 8:45 ते समाचार संध्या। 9 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो तुसी सुनोगे 9:30 पंजाबी नाटक सदमा। लेखक होंगे सतीश टंडन। ₹10 दियां मुख खबरां तो बाद 10:02 ते कवालियां सुनोगे। रात 10:30 तुहाडी फरमाइश दा प्रोग्राम तुसी सुन सकदे हो। ए प्रोग्राम फोन इन ते व्हाट्सएप आधारित होएगा। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सुनोगे सौगात। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानकियां।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
1: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ ते तू वायरल ना होंदा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नू छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांड्यां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत प्रोग्राम फौजी वीरा लई। फौजी वीरा प्रोग्राम च अगला गीत पैडमैन फिल्म चो लिया गया, आवाज अरिजीत सिंह दी, गीतकार ने कौसर मुनीर और संगीतकार ने अमित त्रिवेदी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी ली सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: फौजी वीरो तुहाडे नजर कर रहे हां, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म चुलिया गीत, आवाजां दर्शन रावल दियां और रोचक कोहली दियां, गीतकार ने जावेद अख्तर।

0: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने मुलाकात करने के INDIA ब्लॉक की दरखास्त पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर भारतीय शहरी के लिए खुले हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज़ किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई में कम गहरे समंदर के तीसरे आबदोश शिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इसे कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने तामीर किया है। मुल्क में ही तैयार किए गए इस बहरी जंगी जहाज को शामिल किया जाना साहिली और कम गहराई वाले समंदर में आबदोजों के खतरात का पता लगाने और इसकी रोकथाम के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियत को मुस्तहकम बनाने की समत एक अहम कदम है। इसे बाजाब्ता तौर पर पानी में उतारने की तकरीब की सदारत बहरिया की मगरबी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस एडमिरल ने कहा कि इस जंगी जहाज में 80% से ज्यादा साजो सामान अंदरून मुल्क तैयार किया गया है। इससे भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत, तकनीकी पेशरफ्त और कौमी अज़्म की अक्कासी होती है। बहरिया की तौसी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में 10 बहरी जहाज बेड़े में शामिल किए गए हैं और मजीद 8 जंगी जहाजों को जल्द शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बहरी जहाज का नाम मैंगरोल पर रखा गया है जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक साहिली कस्बा और माहीगीरी का एक बड़ा मरकज है। नए बहरी जहाज का डिजाइन मौजूदा बहरी सिक्योरिटी के चैलेंजों की मुनासबत से तैयार किया गया है। INS मंगरोल जदीद तर्ज के हथियारों और सेंसर से आरास्ता है। इनमें हल्के वजन के टोरपेडोज और अंदरून मुल्क तैयार किया गया आबदोशिकन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और किसी भी आम शहरी या मुंतखब इदारे के मेंबर की किसी भी दरखास्त का खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय शहरी को अदालत से रुजू करने का हक हासिल है और अदालत उनकी तशवीश की समाअत करेगी और कानून के तहत जो कुछ भी मुनासिब है राहत फराहम करेगी। नई दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक कमीशन के 33वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आईन में हर शहरी से अजमत, वक़ार, बराबरी, आज़ादी और इंसाफ समेत वसी वादे किए गए हैं। मुलाकात के लिए INDIA ब्लॉक के मुतालबे का तस्करा करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल एक मुरासला मौसूल हुआ था जिसमें मिलने का वक्त मांगा गया था और उन्होंने कल रात इसका जवाब भेज दिया और उनसे मिलने से कासिर रहने की वजह भी बताई।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक अपोजिशन के एहतजाजी मार्च के तनाजुर में दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात से नई दिल्ली में आज 6 मेट्रो स्टेशनों पर दाखिल होने और बाहर निकलने के दरवाजे शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट और बाराखंबा रोड स्टेशन शामिल हैं। सभी मुतालिका मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अमन कानून की सूरत हाल के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मिंटू रोड, मंडी हाउस, गुरु नानक चौक और लोधी रोड फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के मुतासिर रहने का इम्कान है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मुनसलिक दुनिया में बैन अक्वामी इश्तराक महज एक सिफारती मुतबादिल नहीं बल्कि ये दुनिया में अमन, सलामती और खुशहाली की एक कलीदी ज़रूरत है। आज नई दिल्ली में 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज उन्हें इज्तमाही इकदाम में बदलने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और दहशत गर्दी जैसे आलमी मसाइल का तकाजा है कि इज्तमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। नायब सद ने इस बात को उजागर किया कि वसुधैव कुटुम्बकम सिर्फ भारत का नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में कुदरती आफत या सानहा पेश आने की सूरत में भारत

0: मदद की पेशकश करने वाले अव्वलीन मुल्कों में आगे रहा है। नायब सदर ने कहा कि भारत दूसरों पर गलबा हासिल करने या हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है कि कोई भी मुल्क भारत पर हुक्म न चलाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राज सिंधिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और कुर्बानी लोगों को हमेशा तहरीक देती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्यालात और नजरियात तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अज़्म को नई ताकत फराहम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों से सरकार ने असलाह से लेकर तकनीक, साजो सामान और तरबियत तक सभी शोबों में खुद किफालत हासिल करने और उन्हें जदीद तर्ज पर ढालने पर तवज्जो मरकूज की है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दिफाई साजो सामान का बड़ा हिस्सा मुल्की वसायल से तैयार करता है।
1: हमारे सैनिकों का वेलफेयर हमारे लिए कोई पेरिफेरल इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। और जब हम अपने सैनिकों को अच्छा भोजन, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो मैं मानता हूं हम एक तरह से उनके मनोबल को मजबूत करते हैं। और एक मजबूत मनोबल वाला सैनिक ही किसी भी चुनौती का बेधड़क सामना कर सकता है।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वफाकी हुकूमत के जरिए इमरजेंसी नाफिज करने और जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरबराही वाली सूबाई हुकूमत को मुअत्तल किए जाने के बाद तशद्दुद में इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पुलिस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी की खबरें हैं। कल सूबे में वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज फूट पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद की जानिब पीटीआई का मनसूबाबंद मार्च में भी रखना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने सवाबी जिले में पीटीआई के 59 कारकुनान को जबकि खैबर जिले में 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में यह भी कहा गया है कि साबिक वजीर आला सुहेल आफरीदी और पीटीआई के सूबाई सद जुनैद अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। साबिक वजीर आला अली यमीन खान गंडापुर ने कहा कि उन्हें डेरा इस्माइल खान में घर में कैद करके रखा गया है। अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमलों को रोकने से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि जंग बंदी फौरी तौर पर रोक कर दी गई है। अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी रायजनी नहीं की है। यूक्रेन के सर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों से गुरेज करने को तैयार है। अलबत्ता ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद यूक्रेन की तवानाई से मुतालिक तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए है। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में भी अगले 2 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। उधर आंध्र प्रदेश में अगले दो तीन दिन तक तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरा से निपटने की खातिर आबदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आलमी इश्तराक, मुश्तरका मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तिमाई इकदाम में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन ने तवानाई के ठिकानों पर हमले ना करने से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
3: लाओ जी, आज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
4: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होण दा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV AIDS किवें नहीं फैलदा।

0: एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: की कहा तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया है, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसी नाल सांझी ना करो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो, खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हां कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। तुहानू सुणाउण जा रहे हां जुर्म फिल्म दा गीत, आवाज़ां कुमार सानू ते साधना सरगम दियां। गीत तुहाडे रेडियो सैट ते।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
1: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ ते तू वायरल ना होण दा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV AIDS किवें नहीं फैलदा। HIV

0: एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कटण नाल।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: फौजी वीरां तुहाडे नजर कर रहे हां फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म दा गीत। आवाजा दितिया ने आतिफ असलम और चिन्मई श्रीप्रदा ने। इस गीत नु लिखिया इरशाद कामिल ने।

0: पोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया।

गया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार

0: गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
1: स्मैच द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद है उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैच द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद है उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1 करोड़ 80 लाख टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है।

0: कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साढ़े स्रोते वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे राही आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे ने। रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गाए कलाकार ने राजकुमार ते साथी।

मैं देखी माई जी शेर सवारी तेरी। हुणे तुसी सुन रहे सी राजकुमार ते साथियां वल्लों माता दी पेंट। आओ हुण सुनदे आ इहनां दी ही आवाज़ च, माई मैं तेरा किस विध नाम ते आवां।

मुल्ला पर्दा खां तो कृष्ण गोपाल शर्मा, बिट्टू जैन जे बी राव, टीटू जैन, सारिका जैन, संजीव जैन ते वनीता जैन। अगली चिट्ठी साढ़े को आई है जी, ये सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र तो नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े ते आकाश कुमार। चौधरी मार्केट बोहर रोड मलोट तो चिट्ठी सानू भेजी है जी, कप्तान सिंह, सैक्टर शमशेर सिंह, तरविंदर शर्मा, रविंदर राधे ते मनफूल। ते चौंक बत्तियां वाला पिंड माधोपुर जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो सानू चिट्ठी भेजी है जी, बलविंदर बिल्ला माधोपुर।

चढ़ी पींग देवांग जवानी जवानी चढ़ी पींग देवांग जवानी नी इक झूटा मैं भी मंगना नी इक झूटा मैं भी मंगना है।

भारतीय समुद्री फौज ने आज मुंबई च पनडुब्बी विरोधी जहाज INS मंगरोल नू समुद्री फौज च शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार पिछले कुछ सालों तो रक्षा खेत्र विच आत्म निर्भरता अते आधुनिकीकरण ते ध्यान केंद्रित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जदों संविधानक अधिकारां दी उल्लंघना हुंदी है ता अदालतां नूं दखल देना चाहिदा है। चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दे दरवाजे हरेक लई खुले ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि एक आपस विच जुड़े संसार विच अंतरराष्ट्रीय सहयोग सिर्फ एक कूटनीतिक विकल्प नहीं

जब दो दिल मिलते हैं तो मौसम भी गुनगुनाता है, चांद अपनी चांदनी से मोहब्बत का पैगाम सजाता है। कुछ मिलन सिर्फ मुलाकात नहीं, एहसास बन जाते हैं, और कुछ खूबसूरत पल उम्र भर के लिए याद बन जाते हैं। सदाबहार गीत प्रोग्राम च अगला गीत तुहाड़े नजर कर रही हैं अभिमान फिल्म दा। आवाजा लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दियां, गीतकार ने मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार एसडी बर्मन।

0: लहरों में संगीत हो, हवाओं में प्यार हो, चांदनी रात में खूबसूरत एहसासों की बहार हो, चलो दिल की दुनिया में ऐसा समा सजाएं कि हर धड़कन में मोहब्बत के नगमे गुनगुनाएं। तो सुनान जा रही हैं प्रेम कहानी फिल्म द गीत, आवाजा किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दियां। इस गीत नु लिखिया आनंद बख्शी ने ते संगीत निर्देशक ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार

कुछ गीत दिल के बेहद करीब होते हैं, कुछ एहसास बड़े ही नसीब होते हैं। जब किसी की याद दिल में घर कर जाए तो दूर रहकर भी वो दिल के करीब होते हैं। प्रोग्राम दा आखरी नगमा तुहाडे नजर कर रही हां, मेरे सनम फिल्म चो लिया गया। आवाज आशा भोसले दी, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ने ओपी नैयर।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु रामदास महाराज जी का आगमन पूर्व 27 अक्टूबर सचखंड श्री दरबार साहब विखे श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा। उहदे संबंध विच वड्डे जिहड़े प्रोग्राम लीके गए आ अमृतसर की धरती ते समूह सिंह समावां ते धार्मिक जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल जिथे अमृतसर शहर विखे गुरु घरां दे विच सवेरे 7 बजे तो 10 बजे तक सारे गुरु घरां दे विच प्रोग्राम लीके गए आ। ते इसे तरह मंजी साहब विखे बच्चियां दे शब्द कीर्तन, गुरबाणी कंठ, गुरमुखी लिखाई प्रोग्राम जिहड़े आ लीके गए आ। ते खालसा कॉलेज विखे भी ये समागम जिहड़े आ हो रहे आ। उहदे तहत 25 ते 26 अक्टूबर मंजी साहब विखे जिथे राग दरबार ते पड़ताल शब्द गायन दे भी कीर्तन दरबार होणगे, 26 अक्टूबर अमृतसर शहर विखे नगर कीर्तन भी कढ़िया जाएगा। 27 अक्टूबर श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते बाबा टल राय विखे जलौ सजाए जाएंगे। उत्थे सारा दिन जिहड़े कीर्तन दे समागम चलणगे ते नाल रात नूं आतिशबाजी होएगी। तिना समागमां दे विच कथा दे तौर ते भाई पिंदरपाल सिंह ते भाई बंता सिंह भी हाजिरी लवाउणगे। मेरी समूह संगत नूं बेनती कीती जांदी है कि इन्हां समागमां दा आपां लाहा लईए, वध चढ़ के श्री दरबार साहब विखे हाजिरी भरीए ते गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

ही चलता है, उसका अटल निजाम है, ते सारे जीव उससे दे हुकम विच ही विचरदे हन। इस तत दी सोची सतपुरशां दी संगत विचों ही प्राप्त हुंदी है। जीव इस जीवन जुगत दी जाचना भी प्रभु गोबिंद पासों ही करता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी जीव नूं सेध दिंदे हन कि उस प्रभु पासों की मंगना है, क्योंकि विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख। साहिब फरमाउंदे ने कि हे जीव, गोविंद प्रभु तों ए मंग कि संतां दी टहल सेवा करदा रहां ते साध जना दी संगत प्राप्त होवे, जे सदका नाम जपदिआं उत्तम पदवी प्राप्त हो जावे। इहो मंग है कि प्रभु दे चरण परसते रहिए ते उसे दी ही शरण नसीब होवे, प्रभु दी रजा विच ही राजी रहिए, तां ही सतगुर मेहर करेगा ते साडा मनुखा जन्म सफला होएगा, फिर सारे परम पुलेखे दुख आदिक खत्म हो जाणगे ते गुरु दे चरण हिरदे विच वस जाणगे। साध जना की संगत विच विचरदिआं ही प्रभु जो बहुरंगी है उसनूं त्योणा करिए ते उस पूर्ण परमेश्वर दी प्रीत मिलणी दा आनंद माणिए। ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। इस शब्द गायन कीता है बीबी कमलजीत कौर होरा ने।

ऐसी मांग गोविंद दे, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गति। इस शब्द गायन की तसी बीबी कमलजीत कौर होरा ने। इस संसार विच उही कुछ वापर रहा है जो प्रभु करवांदा है, अर्थात उसदे हुक्म दी अनुसारी ही सारी सृष्टि है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। गुजरी की वार महला पंजवां दी 18वीं पौड़ी विच इससे तत्थ दी प्रोड़ता है कि उस प्रभु दे हुक्म अनुसार ही सब कुछ वापर रहा है। जीव उसे तरह ही विच रहे हन जिवें आप जी दी मौज है। नाम रंग विच ही दुर्मत दी निवृत्ति हो रही है। निराकार प्रभु दे जाप सदका ही परम पै तों मुक्ति दी प्राप्ति है। तेरे रंग विच रत्ते जीव ही जूना तो मुक्त, आवागमन तो मुक्ति प्राप्त करते ने। आप जी दे हुक्म विच ही कृपा दे पात्र जीवानू अंदर बाहर उही प्रभु नजरी आ रहा है। जिसने उस प्रभु दे हुक्म नू जान लिया है वो कदे भी पछताउंदे नहीं। वो सदा प्रभु दी अमुरली बख्शी हुई दात प्रभु नाम नू हिरदे विच पिरो के रखदे ने। फरमान है, ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवै त्यो होवणा, जह जह रखै आप तह जाए खड़ोवणा। इस पौड़ी दा गायन कीता है भाई बलविंदर सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: त्यों होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। इस पावन रचना का गायन किया भाई बलविंदर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दर्शन सिंह।
1: ये पावन पवित्र शब्द धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की उचारण की हुई गुजरी राग की वार की 18वीं पौड़ी है। तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र अंग 523 ते सभायमान है। इस पावन शब्द विच गुरु साहिब जी मनुख नूं हुक्मी बंदा बनन दा उपदेश देंदे हन ते समझाउंदे हन कि जिहड़े बंदे अरबी हुक्म नूं पछाण लैंदे हन उहनां दे जीवन दे विच्चों अरूणा धूणा गिले शिकवे खत्म हो जांदे हन ते उह अरबी रजा दे विच सदा ही राजी रहिंदे हन। उह हर वेले प्रभु नाम ही मन दे विच परोई रखदे हन ते हर वक्त प्रभु दा ही दीदार करदे हन। व्याख्या वाले शब्द दीआं आरंभक पंक्तियां हन, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवणा, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवणा। भाव कि हे प्रभु जगत विच उसे तरह वर्तारा वरतदा है जिवें तेरा हुक्म हुंदा है, ते जिथे जिथे आप जीवां नूं रखदा है उत्थे ही जीव जा खलोंदे हन। गुरसिखी जीवन विच हुक्म दा विशेष महत्व है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच हुक्म नूं मन्नण दे बार बार आदेश निर्देश हन। इस कुदरत दी सारी कायनात ते रचना उस दे हुक्म विच ही है, हुक्म तों बाहर कुछ भी नहीं। फरमान है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। हुक्म मूल रूप विच अरबी भाषा दा

लड़त तेरी ही टकसाल विच हुई है। मैं हर पासे तेरी ही जोत वेखता हां, पर तेरा रूप की है, कैसा है, ए बयान तो परे है। तू आप ही इना जीवां विच लुकिया होया है, फिर सारे वखो वखरे क्यों नजर आ रहे हैं। तू अंडे जेरज मुड़के अते उत्पुज विच्चों पैदा हुए जीवां दा सिरजक है। ए जीव भिन्न भिन्न ने, पर तू सबना विच मौजूद है, तेरे अनेकां गुण हैं। मैं बेसमझ हाँ, हे प्रभु मैनू मूर्ख नू बुद्ध देहो, मैनू विकारां विच डुबदे पत्थर नू पार लाओ। मेरे साहिबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल परपुर लीणा, आपे सर्ब समाणा। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

मेरे साहिबा तेरे चोज विडाना, जल थल महियल परपुर लीना, आपे सर्ब समाना। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर। असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 6 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो बस कुछ ही पलां च।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागजी और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई।

0: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असि आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 ते 10 सैकेंड होए ने। हुण पेश है प्रोग्रामा दा वेरवा।

हुन तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच कम दियां गल्लां अज दे भा कल दे प्रोग्राम मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल डॉक्टर राहुल कपूर हाड़ी लई चारे बारे जानकारी देणगे। इस तो इलावा खाण पीण वालियां चीज़ां च मिलावट बारे रजिंदर पाल सिंह नाल होई गल्लबात सुनवाई जावेगी। ₹7:10 ते जन सेवा से देश सेवा ए प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। ₹7:45 ते विविधा प्रोग्राम च सुनोगे आकाशवाणी दे संग्रहालय तो राम मनोहर लोहिया दे संस्मरण। इस तो फौरन बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। ₹8 सुनोगे हिंदी गीत। ₹8:10 जनसेवा तो देश सेवा तक विशेष प्रोग्राम सुनोगे खेल महाकुंभ तो खेलो इंडिया। पेशकश बीरेंद्र सिंह। ₹8:40 ते पंजाबी गीत सुनवाया जाएगा। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम तुसे सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे पंजाबी नाटक सुनोगे सदमा लेखक सतीश टंडन। रात 10:00 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा ते 10:02

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ

0: जागरूकता पहल। और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: असी आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, हुण सुनते हैं देश का अंत।

0: द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: तुहाडी चा ईएमआई किराया किवें मैनेज करा? वो एक जुगाड़ है, चंगा पैसा मिलूगा। किवें? अपने बैंक का वेरवा दियो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उन्होंने दसे खाते विच पैसे ट्रांसफर कर दियो, वो कमीशन मिलूगा। एना सौखा? वो कादा सौखा, ये मनी म्यूल है, गैर कानूनी पैसे कमाते ने दूजियां दे खाते राही, अपराध है, वो जेल हो सकती है। ना भाई जी ना, अपना बैंक खाता सुरक्षित रखो, किसी नु वर्तन ना दियो, आरबीआई कहंदा है।
2: जानकार बनो ते सचेत रहो।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने पंजाब अते चंडीगढ़ समेत सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं अपील की है कि वो सेहत केंद्रां वल्लों सेवावां ते सहूलतां लई चार्ज कीतियां जाण वालियां दरां नूं दर्शाउणा यकीनी बनाउण। पंजाब च विशेष गहराई सुदाई SIR 2026 मुकम्मल सारे 117 विधानसभा हल्कियां दीआं अंतम वोटर सूचियां प्रकाशित होईआं। पंजाब सरकार वल्लों पहुंच तो दूर वाले इलाकों च मच्छरां दे लार्वे नूं नष्ट करन लई उन्नत ड्रोनां दी वरतों दी शुरुआत। पंजाब राज सूचना कमिशन वल्लों अज चंडीगढ़ विखे सूचना दा अधिकार दिवस मनाउण लई विशेष समागम दा आयोजन। माई भागो आर्मड फोर्सिस प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दीआं 17 महिला कैडेटां ने NDA दी लिखती प्रीख्या पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल कीती। पटियाला खेल विभाग वल्लों एशियाई खेडां च 2 कांसे दे तमगे जित्तण वाली निशानेबाज परिणास धालीवाल दा सन्मान। ते हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने पारदर्शिता जवाबदेही ते मरीज केंद्रित सेहत संभाल नूं मजबूत करन वल एक महत्वपूर्ण कदम चुकते हुए पंजाब ते चंडीगढ़ समेत सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं अपील कीती है कि वो सेहत केंद्रां वल्लों पेश कीतियां जांदियां सेवावां ते सहूलतां लई चार्ज कीतियां जाण वालियां दरां नूं दर्शाउणा यकीनी बनाउण। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸੂਚ

0: क्या प्रिंसिपल साहब जी घर ही हो? लंघ आइए।
1: आ जाओ आ जाओ बच्चों वाले आ
0: आ
1: जाओ।
0: गए जी, आ गए जी, आ गए।
1: होर सुनाओ कमल जी, की हाल चाल है तुहाडे?
0: सब तो पहले था जी, जय हिंद कबूल करो।
1: जय हिंद जी। बड़ा नूर झलकदा पिया तुहाडे चेहरे तो अज टिक्का लगाने तो बाद।
0: देखो जी, नूर तां झलकेगा ही जदों मां दे चरणा दे दर्शन करके असी आई हुई, ते नूर तां फिर चेहरे दे ते होना ही है।
1: तुहानू भी ते सुनने वाले सारे दोस्तों नू माता दे दूसरे नवरात्रे दियां बहुत बहुत वधाइयां जी।
0: तुहानू भी जी।
1: ये दिन जिहड़े है माता दे दिन भी है, क्योंकि इंसान नू जिंदगी च जो कुछ भी चाहिए हुंदा वे
0: बिल्कुल।
1: आपां माँ दुर्गा दे नौ रूपां कोलों मंगदे हां, चाहे पैसा है, ज्ञान है, ताकत है।
0: बिल्कुल, देखो मां जिहड़ा रुतबा ही बहुत वड्डा हैगा, चाहे वह तुहाडी दुनियावी मां होवे ते चाहे अध्यात्मिक मां होवे, दोनों का आशीर्वाद तुहाडे नाल पूरा चाहिए।
1: बिल्कुल जी। तो ये तो है जी, इनका धार्मिक पक्ष। धार्मिक के नाल नाल जिहड़ी मेन चीज़ है जिहड़ी आपां अनगोल दिंदे आ वो है जी मौसम ते तुहाडी सेहत।
0: बिल्कुल।
1: जिन्हें भी साढ़े रवायतां च दिन त्योहार आते हैं, चाहे वह धर्म के नाल है या किसी की याद के नाल है,
0: बिल्कुल
1: उनकी जड़ विच तुहाडी सेहत ते मौसम ये नाल जुड़े हैं।
0: बिल्कुल। देखो गल इदा कि साढ़े जिहड़े बजुर्ग आ ना, उन्होंने सारिया रवायतां जिहड़ियां बनाईयां ना साढ़े सेहत नूं देख के बनाईयां। हुण मिलट्स का असीं अजकल रौला पाने फिरते हैं, मिलट्स जिहड़ा मोटा आहार सी वो सानूं काफ़ी तां चेता ही भुल गया, पर सियोंक दे चौल इदा दे आ सानूं हाले भी अज भी याद आ। वो क्यों? क्योंकि नरातियां दे विच खाण लई साडे कोल चीज़ां ही इह सीगियां।
1: बिल्कुल जी। ते जदों भी मौसम बदलदा वे पेट जिहड़े मौसम की आदत बनाई हुंदी है, जिदा हुण गर्मियां बीत रही सीगियां,
0: बिल्कुल
1: गर्मियां च पेट की मंगदा जी? ठंडियां चीज़ां। ते आने वाले टाइम च मौसम का बदलाव, जिन्नियां चीज़ां भी तुसी खानियां ताकत वालियां भारियां ते गर्म चीज़ां खानियां, ते अगर ठंडा खांदे खांदे यकदम गर्म तासीर च आ जाओगे बीमार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਡੀਅਮ 5343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, ਟੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7:10 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा। गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा, इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तब लक्ष्य यही था कि गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, गुजरात का नाम भारत के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचाया जाए। गुजरात से लेके विश्व मंच तक का सफर, उभरता भारत, विश्व मंच पे डटा भारत, आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास विशेषज्ञों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी आकाशवाणी समाचार में अम्बेसडर अशोक सज्जनहार का और श्री अतुल अनिजा का। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपनी बात बहुत ही बखूबी से रखते हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है आकाशवाणी में। अम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी, वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो साल 2003 में शुरू हुआ ये समिट, एक इन्वेस्टर समिट के रूप में शुरू किया गया था। बीते सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म बन गया है, जो सरकारों को, बिजनेसेस को, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी अम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है, आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
3: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई, और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल रायट्स हुए थे, वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में, और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हो, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर दो साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद 2005 को फिर से शुरुआत की गई। 2005 से 2007 में हर दो साल बाद इसका हुआ, और अब अगर देखा जाए तो

0: वो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा जो आगे ले जाते हुए 2 साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का, वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नए तकनीक जो हैं उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, विकसित भारत को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
1: अम्बेसडर सज्जनार, आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनेजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अगर हम G20 समिट की बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत के 60 से ज्यादा शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले कि हम इसमें चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
2: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए, जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है?
3: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सदस्य बने G20 के, तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि पहले परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मैच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
1: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया गया और साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अम्बेसडर सज्जना, आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि अफ्रीकन यूनियन को इस फोल्ड में लाने के पीछे प्रधानमंत्री की कौन सी दूरदर्शी सोच रही होगी।
0: देखिए, जब से ये G20 की शुरुआत हुई थी 2009 में, 2010 में, जबकि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक

0: क्राइसिस हुआ था, तो तब से ये था जो अफ्रीका के जो देश हैं उनकी कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। केवल साउथ अफ्रीका एक देश था जो कि G20 का एक सदस्य था, परंतु तब से बहुत सालों से हमेशा से अफ्रीकन यूनियन ये हमेशा कहता रहा जो उसको इसका सदस्य बनना चाहिए। हम जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन सदस्य, यूरोपियन यूनियन 27 देश है उसमें, परंतु अफ्रीका के जो हैं वो 54 देश हैं, परंतु उनकी कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है तब जब बाली का समिट हो रहा था, तो तब उन्होंने कहा था हम गारंटी देते हैं जो हमारे जब अध्यक्षता होगी तो हम जरूर अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलाएंगे। और आपको याद होगा जो 9 सितंबर 2023 को जब पहले दिन ही ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उस समय पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया जो ये पूरी तरीके से सभी देशों को मान्य है, जो अफ्रीकन यूनियन को भी एक इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्लोबल साउथ जो भी है, विकासशील देश हैं, उनके जो भी हित है उनको सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा जो जब भारत ने इसकी अपनी अध्यक्षता संभाली थी 1 दिसंबर 2022 को, और उसके एक महीने के अंदर ही हमने जिसे कहा जाए तो एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 11-12 जनवरी को। तो 125 देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसमें शिरकत ली, और उसमें हर लेवल पर, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो, अलग अलग देशों ने उसमें सम्मिलित हुए, या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की। और फिर जो भी उनसे पूछा गया जो उनकी क्या मंशाएं हैं इसमें, तो सभी के, चाहे वो डेट हो, चाहे उनका फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए, 60 शहरों में ये मीटिंग की गए, और ये जो सभी थे डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सबको लेकर आया गया। तो मैं समझता हूँ जो भारत ने ये बताया है, जो विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है, हमारा जो इसमें थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो था वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया, और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाया गया।
1: मिस्टर अनिजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया, और GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला, और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनिजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी?
2: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो, ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है, तो एनर्जी के ऊपर, बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी, ये हमारी एक बुनियादी सोच है। G20 में जो वसुधैव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन्स उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अब अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है, और बाकी देशों को, खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होती थी, तो प्रधानमंत्री ने

0: ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी, तो वो अब वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होके आप डीपर जा रहे हैं और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स एक्सटर्नल एंगेजमेंट G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आप

0: जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बनाया जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खासकर के जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में, और एम्बेसडर सज्जनार सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है। और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने ब्रिक्स समिट में लीडर्स समिट को एड्रेस करते हुए बोला।
2: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाए, और इस प्रोसेस में भारत को किन कम्पीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
3: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को, और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूँ जो चुनौतियां भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे, और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, परंतु अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने, और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं, और इसमें ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा सभी मिलकर ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए। तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये

0: शुरुआत की, और मैं समझता हूं जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
1: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर नीजा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा अल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है, और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहां पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक ऑल्टरनेट रूट और एक स्टेबल रूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है तो उससे भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से ग्रो करेगी। और दूसरा प्रश्न आपसे अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनीजा दोनों से आपसे मैं ये करना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वो कैसे ट्रांसलेट करती है जब हम किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो वहां पे निर्णय निकल के आते हैं, या फिर किसी बायलैटरल मीटिंग में भी देखें तो काफी मुसीबतों का भी हल निकल कर आता है। इन दोनों ही प्रश्नों पे सबसे पहले मिस्टर अनीजा आपका जवाब चाहूंगी और फिर अम्बेसडर सज्जनहार का।
2: दीक्षा, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। अब देखिए कि अभी इस वक्त जो है हम दो मेन मैरिटाइम चैनल्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा बाबल मंदाब जो रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। दोनों में ही एक तरह से जो ट्रेड होती है या वहां से जो शिप्स निकलते हैं सीवियर बाधा पड़ी हुई है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये रूट्स का जो मैरिटाइम रूट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमें देखना है कि ऑल्टरनेट लैंड रूट्स कौन से आ सकते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल रूट्स की अब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि आज हॉर्मुज है, बाबर मंदाब है, और कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका में कुछ हो जाता है चीन और यूएस के बीच में ताइवान के ऊपर जिस तरह से टकरार है तो फिर हम कहां जाएंगे। तो इसलिए भारत की ऑल्टरनेटिव रूट्स, जैसे अम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वो बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा हमें देखना है कि INSTC का फाइनली अगर हम देखें उसका रूट ईस्टवर्ड्स जाता है रशियन फार ईस्ट की तरफ, व्लादिवोस्टोक की तरफ, वहां से नॉर्थ आर्कटिक रूट निकल रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से चैनल्स निकल रहे हैं। हमें वो ज्योग्राफी भी देखने की जरूरत है क्योंकि वो फिर ना मलाका को क्रॉस करते हैं ना ये हॉर्मुज या बाबल मंदाब बलियाब की प्रॉब्लम आती है, और तीसरा जो है व्लादिवोस्टोक में चेन्नई। तो मुझे लगता है कि ये लैंड रूट्स और ये जो ओशनिक बॉडीज हैं जहां पर विवाद कम है वहां पर हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जो दुनिया की हालात है ये इन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इनको एक्टिवेट करें। ये आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जब मैं दिल्ली में था ये बात होगी शायद 2000 या 2001 की, तब से बात चल रही है, लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है कि इन रूट्स को जो है पूरी तरह से कायम किया जाए, खास करके अभी जो रिसेंट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है हॉर्मुज को लेकर और बाबर मंदाब को लेकर, मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात आपकी दीक्षा जो थी वो है पर्सनल केमिस्ट्री की प्रधानमंत्री की। ये एक बड़ा ही यूनिक एलिमेंट आया है कि पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की जो कनेक्ट है, चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक तरह से आता है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि दुनिया में कई लीडर ड्रिवन डिसीजंस होते हैं तो उसमें बहुत एक तरह से भारत के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि आपके जो टॉप लीडर्स के साथ जो है सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं बट पर्सनल इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छी हैं, उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है। हम देख रहे थे इंडोनेशिया में भी विजिट हुआ, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति प्रभवो प्रधानमंत्री के साथ पूरे विजिट में साथ थे, रिसीव करने के साथ साथ जो भी पूरा विजिट था, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से वेलकम किया गया प्रेसिडेंट प्रबोवो ने, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल एलिमेंट एक बीच में आके एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि ये एक एलिमेंट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि मिस्टर अनीजा ने कहा, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप अपने विचार इस चीज पे हमारे साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और उसका कितना फायदा मिलता है भारत को डिप्लोमेटिकली।
0: जी देखिए, ये बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जो बेसिकली दो देशों के बीच में अगर जो रिश्ते होते हैं संबंध होते हैं तो वो उनके इंटरेस्ट पर होते हैं, वो उनके हितों पर होते हैं, वो उनके पर्सनल

0: रेपो पर्सनल रिलेशंस पर नहीं होते हैं, परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमने देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहज तरीके से सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलना होता है, और चाहे जो पूरे विश्व के जो नेता हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों देशों के बीच में, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको अपने पर्सनल रेपो से, पर्सनल रिलेशन से एकदम वो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का, जो वो सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं। एक जो दूसरा आपने प्रश्न किया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं, जो कनेक्टिविटी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, देखिए हॉर्मुज में करीब पूरे विश्व का 20% जो तेल है वो वहां से जाता है, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को, तब से हम देख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और ये इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो विकासशील देश है उनको, और उनमें भी भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत करीब अपना 85% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है, और उसके अलावा अगर हम देखें जो गैस है, LPG है, LNG है, करीब जो भी हम जितना भी आयात करते हैं उसमें करीब 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसलिए यहाँ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन गया है, और इसको इधर से तेल का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और इसीलिए भारत हमेशा यही कहता है जो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। यही बात बाबेल मंडप की है, यहाँ पर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% तेल जाता है तो बाबेल मंडप का करीब 12-15% तेल जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हो गए हैं, और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अब INSTC की बात हुई, IMEC की बात हुई, और फिर अब ये पोलर रूट की बात है, क्योंकि जो रूस के उत्तर से जो पोलर रूट जाता है, और इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहेगा, जो हमको और भी जो हर प्रकार के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे याद है ये जो INSTC 1997 में जब मैं मॉस्को में हुआ करता था तब की हमने शुरुआत की, परंतु ये इसको आगे हम नहीं ले जा पाए क्योंकि हमेशा ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस बने रहे, परंतु अब हमको ये जरूर प्रयास करना है जो उसमें हो चाबहार को भी हमें डेवलप करना है, और जल्दी से इस क्षेत्र को बिल्कुल सभी मिलकर इसमें शांति लानी चाहिए, जिससे कि हम इसको आगे जो INSTC और चाबहार को और आगे ले जा सके।
1: मिस्टर अनेजा, मेरे पास अभी दो और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं दोनों ही विशेषज्ञों से आपकी राय जानना चाहूंगी। तो मिस्टर अनेजा, आपसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस दुनिया के 7 मेजर कैट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी की बात है, ये वाइल्ड लाइफ की बात है। तो अगर इसके बारे में आप हमसे चर्चा करें तो इसके आउटकम्स आपके हिसाब से कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इसको हम कैसे प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे?
2: भारत की जो अप्रोच रही है पूरे विश्व के लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, खास करके अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में जो एक तरह से संतुलन की जरूरत है, जिसमें आपके जो ग्रीन कवर है, अमेज़न के फॉरेस्ट हैं जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके बीच में एक संतुलन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी विश्व में बैलेंस रहेगा, और जिसका इफेक्ट अगर बैलेंस ना रहे तो फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर से लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये संतुलन बनाए रखे, और यही अप्रोच भारत की रही है। जहां तक के सवाल आ रहा है बिग कैट अलायंस का, तो ये एक बहुत जरूरी उसमें एलिमेंट था। हमने देखा कि भारत के अंदर एक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल इनिशिएटिव था कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो आपको याद होगा 2022 की शायद बात है कि जब हम चीता को बोत्सवाना से और साउथ अफ्रीका से लेके आए यहाँ पर भारत में, तो बिग कैट अलायंस का और उसके तरफ जो फोकस है वो उस बात से बिल्कुल दर्शाता है, मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि हम बिग कैट अलायंस हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसको

0: टूरिज्म से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुकी है सिर्फ भारत के टूरिज्म के लिए। अफ्रीका में देखा कि किन्या में जैसे तंजानिया के बॉर्डर पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद पर लोग जाते हैं एनिमल माइग्रेशन को देखने के लिए,
1: मसाई मारा।
0: तो एक तरह से मसाई मारा वही एलिमेंट है कि सिर्फ उसके कई पहलू हैं, एक तो जो बैलेंस की मैंने बात की है, और दूसरी एक जो बात है कि हम अपने एनवायरमेंट और अपनी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा और ज्यादा जुड़े। हम आजकल देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है जो रोके जा रहे थे उनको भी खोला जा रहा है, तो इसलिए एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, आखिर में चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। हमने इतने बड़े मुद्दों पे चर्चा करी और अब मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरफ आना चाहूंगी और वो है योगा डिप्लोमेसी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल योगा डे यूएन ने डिक्लेयर कर दिया और आज अगर हम देखें तो योगा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है और ना ही सिर्फ एक व्यायाम का रूप है, बल्कि पूरे दुनिया में लोग योगा से प्रभावित हैं, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। तो योगा को एक सॉफ्ट पावर और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टूल के रूप में अगर हम देखें तो कैसे इसने पूरा एक रूप निभाया है, और योगा के साथ अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ दें, आप कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के फेवर में कैसे काम करती हैं?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 2014 में, आपको याद होगा जो पहली बार वो सितंबर 2014 में वो गए थे वहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, और तब मुझे याद है जो उन्होंने कहा था, और ये उनका ही था, आउट ऑफ द बॉक्स उनका ये थिंकिंग था, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, भारत की कोई ऐसी देन देनी चाहिए पूरे विश्व को जिससे कि वो पूरे विश्व को उसका फायदा होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में मनाना चाहिए, और मुझे याद है जो तब हमारे जो सभी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जो अपनी डेलीगेशन थी उन्होंने कहा जो उनको बहुत ही ये ऐसा इसमें कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं लगा, परंतु फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं इसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए, और फिर उसी साल हमने देखा है जो करीब पूरे विश्व के 193 देश हैं, परंतु उनमें से 177 देशों ने मिलकर इसको प्रमोट किया और इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस जून को उन्होंने माना और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हर साल पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और बहुत ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से, इसको ऊर्जा से इसको मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा जो ये सॉफ्ट पावर की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनकर उभरा है, और इससे पूरे विश्व में भारत का एक डंका बजता है जो केवल एक इसको एज एन एक्सरसाइज लिया जाए, परंतु ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक होलिस्टिक तरीका है जो अपने को डेवलप करने का, अपने को आगे ले जाने का, और इससे पूरे विश्व में इसका भारत की जो छवि है इसको और भी और आगे लेकर जाया गया है। तो मैं समझता हूँ योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व में, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, यही मैंने पहले भी कहा था, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है, जो विजन है, वो इन सभी चीजों में दर्शाता है जो कैसे हम जहां पर लोग नहीं सोचते जो कोई पॉसिबिलिटी है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, उसमें ही संभावनाएं निकाल लेते हैं, और उसी से पूरे विश्व में भारत का जो योगदान है उसको और आगे ले जाने में सफल रहे।
1: अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनेजा, दोनों विशेषज्ञों ने ही काफी विस्तृत रूप से सारे ही विषयों पे हमें जानकारी दी, और जो हमारा डिस्कशन रहा है आज उससे मेरे लिए तो काफी ही इनलाइटनिंग रहा है। आई एम श्योर जो भी लिसनर्स इस डिस्कशन को सुनेंगे उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 25 वर्षों की जो प्रधानमंत्री की जर्नी रही है वो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपना देश में उन्होंने जो किया वो तो किया ही, उसके साथ साथ विश्व मंच पे कैसे भारत आगे जाए उस पे भी काफी काम किया गया है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद दीक्षा, बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम

का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ये आकाशवाणी का जालंधर केंद्र है।
1: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक और प्रखर राजनेता थे। उन्होंने सामाजिक समानता, जातिगत भेदभाव के अंत और महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी याद में आइए विविधा प्रोग्राम में आज सुनते हैं आकाशवाणी के संग्रहालय से उनके संस्मरण।
2: आज मेरी 70 वर्ष की उम्र है और 60 वर्ष मैंने देश की सेवा में खर्च किए हैं। जिस वक्त मैं 10 वर्ष का था, उसी वक्त मैं इलाहाबाद में आ गया था। मेरी माता का देहांत हो गया था। जब मैं इलाहाबाद में आया तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल जी के दरवाजे पर एक स्कूल था। उस स्कूल का नाम था शिवराखंड पाठशाला। तो सबसे पहले मैं उसी पाठशाला में दाखिल हुआ था, एक बरस पढ़ने के पीछे। फिर मैं कायस्थ पाठशाला कॉलेज में 6वें दर्जे में भर्ती कर लिया गया था। वहाँ की जिंदगी मेरी एक अजीब ही किस्म की जिंदगी थी। वहाँ पर मैं कभी आर्य समाज के उपदेशकों के लेक्चर सुना करता था, कभी किसी के लेक्चर सुना करता था, कभी ईसाइयों के सुना करता था। लेकिन सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो असर मेरी ज़िंदगी पर पड़ा है वो है स्वराज का। वहाँ पर एक इलाहाबाद में सन 1906 में एक पेपर निकलता था स्वराज, उसके ऊपर ये मोटो लिखा था कि वतन पर जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो पेपर पढ़ करके मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा कि चलो इसके संपादक से कुछ बातचीत करें। जब मैं पंडित शांति स्वरूप भटनागर के पास गया, जो उस अखबार के संपादक थे, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे भी कुछ काम बतलाइए। तो उन्होंने चक्की के तरफ इशारा करके कहा कि मैंने यहाँ पर चक्की लगा रखी है अखबार में, और जो आदमी देश के का काम करना चाहता है उसे कमती से कमती 2 महीने तक चक्की तो पीसनी चाहिए। चक्की का पाठ पढ़े बगैर, चक्की का सबक सीखे बगैर कोई भी काम, कोई भी आदमी हिंदुस्तान का, देशभक्ति का या देश का काम नहीं कर सकता। उसी वक्त मैं जाया करता था और कभी कभी चक्की भी पीसा करता था, प्रैक्टिस करता था। मेरे साथ 2-3 और लड़के थे, एक बंगाली लड़का था सतीश चंद्र, एक रामकिशोर चौधरी था। हम 2-3 लड़के जा कर के बारी बारी से चक्की पीसा करते थे। हमारा पहले, हमको ये ख्याल नहीं था कि चक्की पीसने से क्या क्या होता है। लेकिन पीछे जिस वक्त शांति स्वरूप जी पकड़े गए और उनको 3 साल की सजा दी गई, तो उसके पीछे जब हम उनसे मुलाकात करने को गए तो हमको पता लगा कि जेल में कोई भी आदमी जब जाता है तो उसे सबसे पहले चक्की पीसने का काम दिया जाता है। उसके पीछे हम जिस वक्त शांति स्वरूप जी पकड़े गए और इलाहाबाद की कचहरी में लाए गए,

तो हम कोई 50-60 लड़के स्कूल के माला लेकर के उनको मालाएं चढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनको 3 साल की सजा दे दी। उसके पीछे दूसरा संपादक आया, 10-15 दिन तक वो रहा, उसको पकड़ करके उसको भी 7 साल की सजा दी गई। उसके पीछे तीसरा संपादक आया, उसको भी 10 वर्ष की सजा दी गई। उसके पीछे चौथा संपादक आया, 5वां संपादक आया, 6वां संपादक आया, 7वां आया, 8वां आया, 9 आया, यानी 9 संपादकों को सख्त से सख्त सजा उस वक्त मिली। मेरा ऐसा ख्याल है कि इलाहाबाद में स्वराज के एडिटरों को जितनी सख्त सजा मिली, इतनी हिंदुस्तान में और किसी जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि लड्ढा राम जी को और तो काले पानी की सजा दे दी गई थी। मुझे पता है जब मैं काले पानी में था तो लड्ढा राम के हाथ की लिखी हुई किताबें मैंने अंडमान में देखी थी। इसी तरह से मेरी जिंदगी इलाहाबाद से शुरू होती है। थोड़े दिन के पीछे लाला लाज ये हमको सुना, हमने सुना कि लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह जी, जिनको मांडले में कैद कर दिया गया था, वो छूट करके आ रहे हैं। जिस वक्त उनके आने की खबर लगी तो सारे स्कूल और कॉलेजों में तूफान सा मच गया। सारे कॉलेजों के लड़के, स्कूलों के लड़के स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर लाला लाजपत राय जी का स्वागत किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रामबाग में एक बड़ी भारी मीटिंग बुलाई। उस दिन एक नज़ारा था, लाजपत राय जी के स्वागत के लिए सारा शहर इलाहाबाद का, इलाहाबाद के हर एक मोहल्ले के हर एक दुकान खाली पड़ी हुई थी। सारा शहर उनके स्वागत करने के लिए स्टेशन पर पहुंचा और रामबाग में उनका स्वागत किया। वो पहला ही दिन था, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुझे बुलाया और कहा, विद्यार्थी जी, मुझे वो विद्यार्थी जी कहा करते थे, उन्होंने कहा कि सुंदर लाल जी को बुलाओ, अलख मुरारी लाल को बुलाओ और आप 2-3 लड़के मिल करके मोतीलाल जी के पास जाओ और मोतीलाल जी को जाके कहो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी आपको बुला रहे हैं, लाजपत राय जी आए हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तो हम 2-3 लड़के मिल करके कर्नलगंज में गए। कर्नलगंज में पंडित मोतीलाल जी नेहरू की कोठी थी। मैं उनसे परिचित था, वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि हम हर वक्त वहाँ से आते जाते आनंद भवन में घुस करके उनके बगीचे को खराब किया करते थे। हम बच्चे थे, कभी कभी उनके यहाँ फल तोड़ लेते थे, कभी उनके बगीचे में कोई चीज़ें तोड़ देते थे, तो हमको अच्छी तरह डांटते थे और हमको मिस्चीवियस बॉय ये कहकर के बोला करते थे। हम उस दिन जिस दिन जब गए तो हमने कहा, पंडित जी आपको पंडित जी ने मदन मोहन मालवीय जी ने बुलाया है। जिस वक्त उन्होंने सुना वो बड़े हैरान हुए, ये तो सचमुच। मैंने कहा बिल्कुल सच्ची बात है, हम 2-3 लड़के आए हैं आपको लेने के लिए और लाजपत राय जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसी वक्त पंडित मोतीलाल जी को जिस वक्त हमने ये कहा तो वो तैयार हो गए। उस वक्त उनके पास कार आर नहीं थी, कार का जमाना भी नहीं था। उस वक्त उनके पास 2 काले घोड़े की एक बड़ी सुंदर गाड़ी थी, फिटन थी उनके पास, उस पर बैठे और हमको भी उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। हम उसके पीछे मैं बनारस चला गया और मुझे याद है सन 10 में जिस वक्त गांधी जी को ट्रांसवाल में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस वक्त उनके साथ 700-800 स्त्रियां पकड़ी गई थी और 6-7 हज़ार आदमी पकड़े गए थे, उसमें उस मीटिंग के उसके बारे में मीटिंग करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और मिस्टर गोखले यहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पर मिस्टर गोखले ने और मालवीय जी ने और शिव प्रसाद जी ने वहाँ पर जो स्पीच दिए, तो उसमें ये प्रपोज किया गया था कि वाइसराय साहब के पास या और इंग्लैंड में एक डिपुटेशन भेजना चाहिए। तो सारी मीटिंग में कोई 1 लाख आदमी था, जिसे मुझे भी फांसी की सजा हुई, लेकिन उसके पीछे आप समझिए कि अपील हुई, बाल आंदोलन हुआ, उसमें 7 आदमी मेरे साथ ही फांसी गए थे उस दिन। और हमको कोई 19 आदमी को छोड़ दिया था काला सिंह को और 19 आदमी को ट्रांसपोर्टेशन आप लाइफ मिला था। तो उसी वक्त हम लोगों को उसी जेल में अलग अलग कर दिया गया और करतार सिंह वगैरह को फांसी चढ़ाई गई और हम लोग अलग कर दिए गए। उस दिन एक बड़ा नज़ारा था, ऐसा अजीब

0: नजारा था कि संसार की दुनिया की तबारीख में इतना गजब का नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के वो देशभक्त गाना गा गा करके, गाना गाते गाते कोठरी से निकलते थे और फांसी के तख्ते तक गाना गाते हुए चले जाते थे। मुझे पता है सज्जन सिंह को जिस दिन फांसी की सजा हुई, वो जिस वक़्त निकाला गया, तो मुझे याद है वो गाना गा करके निकला था। वो गाना ये गाना था, आप हैरान हो जाओगे कि आप लोग कितने बहादुर हो, आपकी ये जो मिट्टी है भारत माता की कितनी ज़बरदस्त है। कि सज्जन सिंह आप लोगों के घर का बच्चा था, आप लोगों के देश में पालन पोषण हुआ था, जिस वक्त उसको कुठरिया से निकाला गया तो ये गा करके वो निकला था, हिंदुस्तान मेरे प्यारियों लाड़ियो हिंद देव, सुनना आखिरी ये सवाल मेरा, रब सुखी रखे तुसी सुखी बसो, यही सतगुरु से सवाल मेरा। माता हिंद की गोद का दूध पिया, इज्जत उसकी बल ख्याल मेरा, हिंदुस्तान कैसी हिंदुस्तान रहसी, हिंदुस्तान अंदर बालो बाल मेरा, माता हिंद की गोद का दूध पीदा, इज्जत उसकी बल ख्याल मेरा, मेरा आत्मा सदा अडोल भीरो, बैरी कर सके नहीं बंगा बाल मेरा। ये कहते कहते वो 18-20 वर्ष का नौजवान लड़का फांसी के ऊपर तख्ते पर चढ़ गया और हंसते हंसते मारा गया था। आप हैरान हो गए, आप हम तो आप लोग तो ये समझते होंगे कि हम लोग जेल में थे, लेकिन सचमुच वहाँ पर हम जेल में नहीं थे, हम एक किस्म की हमको यूनिवर्सिटी मिली थी जिसमें सबसे बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हमको पढ़ने के वास्ते पढ़ाने के वास्ते मिले थे। भाई परमानंद जी हिस्ट्री के महान पंडित थे, सावरकर राजनीति का महान पंडित था, और गोपिंद लाल राय साइंस का बड़ा भारी पंडित था, इसी किस्म के लिटरेचर के जान। यानी मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अगर बाहर रहता और काले पानी में मैं 23 वर्ष रहा हूँ, अगर मैं वहाँ ना रहता तो इतना लिटरेचर मैं कभी पढ़ नहीं सकता था।
1: अभी आप सुन रहे थे विविधा प्रोग्राम में आकाशवाणी के संग्रहालय से राम मनोहर लोहिया के संस्मरण।

0: www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 8:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੱਕ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖੇਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਤੋਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ।

0: खेलो इंडिया, साथ में हैं हम।
1: हुणे तुसे सुन रहे सी जन सेवा तो देश सेवा तक, ए विशेष प्रोग्राम च खेल महाकुंभ तो खेलो इंडिया। पेशकश बीरेंद्र सिंह। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय

0: ਜੀ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है।

0: नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
1: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
0: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
2: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान।

0: हॉस्पिटल है इंस्पेक्टर, मैनू इत्थे क्यों लेके आए हो?
1: पुलिस नू एक लाश मिली है, वो लाश असी इस अस्पताल दे मुर्दा घर विच रखी है। पुलिस नू शक है कि इस कुड़ी दा कतल होया है। उस लाश की पहचान ली असी तैनू इत्थे लेके आए हैं।
0: पर लाश किसती है ते मैं इन्हू क्यों पहचानांगी?
1: ए तू लाश नू देख के खुद ही समझ जाएंगी। कांस्टेबल जरा चको लाश दे मुंह तो कपड़ा।
2: जी जनाब।
1: ध्यान नाल देख।
0: इन्हू नहीं पहचान दे, ए मैं हां, ए मेरी लाश है, मेरी यानी रमन दी। ते पता इन्हू मारिया किन्ने है? मैं मारिया इन्हू, मैं सबनों मार दियांगी, किसे नू नहीं छड्डांगी, मैं मारांगी सबनों, मैं मैं सबनों मार दियांगी।
1: रमन,
0: मैं सबनों मार दियांगी।
1: रमन रुक जा, रमन रुक जा, रमन नहीं तो मैं गोली मार दियांगा।
0: मैं मारांगी सबनों, मैं मारांगी सबनों, मैं मारांगी सबनों, मार दियांगी।
3: रमन दीदी, रमन दीदी, रमन दी की होया तो आनू? उठ के बैठो रमन दीदी, की हो गया? फिर वही सपना आया लगदा।
0: पता नहीं शायद
3: पता नहीं ये केड़ा मनहूस सपना जेड़ा हर रात आंदा ते तुहानू डरा के चला जांदा है।
0: चला किथे जांदा है पागले, ये ता इत्थे ही रहंदा है, किते नहीं जांदा है। इसलिए ता हर रात मैनू सुत्ती पई नू आ घेरदा है। दफा कर, तू सो जा।
3: एक तां तुहाडी ये फिलोसफी ना मैनू कदे समझ नहीं आती।
0: इसलिए ता कहनी हां छड परा, सो जा तू।
3: ते तुसी?
0: मैं भी सो ही जावांगी।
4: रमन उठी नहीं अजे?
5: उठना कित्थों इन्नी जल्दी उन्हें, राती फिर 4 बजे तक उसे तरह जागती रही। कमल दस रही सी कि 2 बार डर के चीख मार के उठी है।
4: रब मेहर करे, पता नहीं की होना है इस कुड़ी दा।
5: रब दियां तां रब ही जाने जी, पता नहीं की लिखिया उसने इस दे मुकद्दर विच। मैं तां उस मनहूस कड़ी नूं रोनी है जेड़े वेले असीं तुहाडे उस यार दविंदर दे मुंडे कुलजीत नाले दा व्याह करन दा फैसला कर लिया, ते कुड़ी उहदे लड़ ला के अमरीका भेज दित्ती।
4: अपने वल्लों ते असीं कुड़ी दा भला ही सोचिया सी, पर सानूं की पता सी उह मुंडा ही फरेबी निकलेगा। ये तो हुण जाके पता लग्या कि अमरीका विच ही पहला ही किसी कुड़ी नाल विआह होया सी।
5: मैं तो हैरान हाँ कि ये गल्लां उहदे घरदिआं नूं भी नहीं सी पता। वैसे सच पुछो तो मैनूं इस गल ते यकीन नहीं आउंदा।
4: दविंदर यार है मेरा, बचपन दा दोस्त, जे उहनूं पता हुंदा तां कदी रमन दा हथ कुलजीत लई ना मंगदा।
5: चंगी दोस्ती निभाई है उहने, जे उह इन्ना ही चंगा दोस्त सी ते उहनूं मुंडे दी करतूत दा वाकई नहीं सी पता, तां उह अजे तक आया क्यों नहीं साडे घर? जदों दी रमन अमरीका तों वापस आई है उहने एक वारी भी शकल नहीं दिखाई, फर्ज नहीं सी बणदा उहदा।
4: पता नहीं उहदे दिमाग च की चल रहा होएगा। नाले आवे ना आवे, असीं तां फैसला कर ही चुके हां कि असी रमन नूं किसी कीमत ते वापस नहीं भेजना अमरीका। बस एक वारी उह सदमे चों बाहर आ जावे किसी तरह, फिर उह अपनी मर्जी दी जिंदगी जिएगी।
5: सदमे चों बाहर आवे तां सही पहला। वैसे मैनूं लगदा है एक आदमी है जिहड़ा इस काम च साडी मदद कर सकदा है।
4: कौन?
5: रमन दे प्रोफेसर, प्रोफेसर भाटिया।
4: हाँ गल तां तेरी ठीक है,
5: ते फिर जाके मिलदे क्यों नहीं?

0: पौरी यूनिवर्सिटी नु नासी ओ रमन मर नहीं सकती शी कैनॉट डाई नो वन कैन किल हर तू भी नहीं शी विल कम बैक शी विल आई विल वेट फॉर हर
1: सर तुसी भी चले गए पर तुसी ठीक कह रहे हो सर मैं वाकई हूं रमन नहीं थोड़ी रमन तो मर गई वो मजबूत इलादे वाली रमन उन्हें मार दिता गया वो हम वापस नहीं आ सकती कभी वापस नहीं आ सकती वो मर गई है वो वापस नहीं आएगी नहीं आएगी वापस
2: जल्दी चलो हस्पताल लेके जाना पड़ेगा चलो चलो चलो चुको चुको
1: चुको चुको चलो चलो
0: करमजीत जी की हाल है रमन दा हुन
2: डॉक्टर्स ने इंजेक्शन वगैरह दे के सोया टेस्ट वगैरह किए ने कुछ उन्होंने देखो हुन
0: मैनू तो जदों दा कमल ने दस्या कि रमन हस्पताल च है मैं उदों दा अपने आप नू कसूरवार मनी जा रहा मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया रमन नू मैनू तो शायद उन्हें मिलना भी नहीं चाहिए
2: पर डॉक्टर का तो यह मनना है कि तुहाडे मिलन नाल और उन्हें कुछ गल्लां कहण दे नाल रमन नू अपना गुस्सा अपने डिप्रैशन नू कढ़न दा मौका मिलिया शायद कुछ हद तक ही सही
0: डॉक्टर का अपना सोचने का एक ढंग होंदा हुण कहिंदे की आ
2: फाइनली हुण डॉक्टर ने केस डॉक्टर अग्रवाल नू रैफर कर दिता है वो बहुत वड्डे साइकेट्रिस्ट ने
0: उन्होंने की किया
2: डॉक्टर अग्रवाल का यह कहना है कि रमन ने शायद अमेरिका विच बहुत जुल्म बर्दाश्त किया ते वो सारा ट्रॉमा जिन्हों उन्हें खून का घुट पी के बर्दाश्त किया उदे अंदर प्या प्या जहर बन चुका है जदों उदे अंदर ये जहर खलदा है उदों उदे दिमाग विच खलल पैदा होंदा है उदे अंदर एक बेचैनी फैलन लगती है ते उस दे दौरान वह कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है वायलेंट भी हो जाती है
0: हल्की दस्या उन्होंने
2: एक तो यह कि उसनू यकीन दिलवाया जाए कि उस मुंडे कुलजीत ने उदे नाल जो जो जुल्म किते ने उन्हां दी सज़ा उन्हू मिल गई है ते वह बहुत पछता रहा है
0: पर यह कितों हो सकता है यह अपने हाथ विच ही नहीं
2: दूजा तरीका यह है कि उस मुंडे दे परिवार वालियां दी एक चंगी तस्वीर उहदे सामने पेश कीती जाए कि उन्हां नू कुछ नहीं सी पता ते उन्हां दा कोई कसूर भी नहीं सी यह गल मैनू भी सच लगती है
0: फिर फाइनली की डिसाइड कीता डॉक्टर साहब ने
2: यही कि फिलहाल दूजा तरीका आजमाया जाए
0: मैं समझ गया तुसी मैनू अपने दोस्त ते उस मुंडे दे फादर दविंदर जी दा एड्रैस दसो मैं उन्हां नू मिलना चाहूँगा
2: जी जी

क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह वालों स्थापित यूवी कैन फाउंडेशन नाल पटियाला विखे छाती अते मुंह दे कैंसर दी व्यापक स्क्रीनिंग दा प्रोजेक्ट चलाउण लई एक समझौता सहीबंद कीता। माई पागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दियां 17 महिला कैडिटा ने NDA दी लिखती प्रीख्या पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल कीती। पटियाला खेड विभाग वालों एशियाई खेडां विच 2 कांसी दे तमगे जित्तण वाली निशानेबाज परिनाज तारीवाल दा सम्मान। सो ACG मुख खबरां। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेश है कवालियां दा प्रोग्राम।

हुण तुसी सुन रहे सी लखविंदर वडाले दी आवाज च कवाले। हुण सुनदे हां हमसर हयात दी आवाज च कवाली ना रुसदी।

इकबाल कवाल ते साथियां दी गाई इस कवाली दे नाल ही कवालियां दा प्रोग्राम हुण खत्म होया। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले 10:30 होए ने। हुण पेश है प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसी वट्सएप राहीं ते फोन राहीं अपने पसंद दे गीत सुन सकते हो। साडा लैंडलाइन नंबर है जी 2342173। एरिया कोड 01 81। व्हाट्सएप नंबर 94655 36070।

0: ਇਸੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यात

0: निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पहला व्हाट्सएप मैसेज समूह पेजरे ने जी जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा पिंड थाना बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता ते कीता इन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज थल लिखा जी खुश रहो खुशियां वंडो। बिल्कुल जी असं खुश रहेंगे तो खुशियां भी वंडांगे ता ही जिंदगी खुशहाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज भी बठिंडा तो ही आया है। भेजने वाले ने रविंदर सिंह गगनदीप कौर जसमीन कौर कुरलीन कौर शिंदरपाल करवीर हाउस पुचो कैंचियां बठिंडा तो सानू मैसेज भेजे ने प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप एकम बहुत सारे साथी।

नमस्कार जी, आदाब। आप हमें किसी भी सदाबहार पंजाबी गीत में शामिल कीजिए। इस तरह के पेजरे ने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेरा जहां, रहने वाले ने आजाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तो। पिंड डाखना निम्माबाद नेड़े सफेदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। मलोट पंजाब तो सानू मैसेज भेज रहे ने राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा, स्वीट मास्टर निवान, कहते हैं कोई भी पंजाबी गीत सुना दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ना प्यारा मैसेज भेजने लिए, धन्यवाद। जैसा कि तुम जानते हो जी, थोड़ा अपना प्रोग्राम है, सानू मैसेज भी भेजो, कॉल भी करो और अपनी पसंद की गीत सारे सुनवाओ। तो लो जी, प्रोग्राम का अगला गीत अस सुन जा रहे हैं शाजिया मंजूर होना की आवाज़ आज। यदि फरमाइश महेश कर्क जी ने की है तो फिर लो जी, अगर गीत पसंद आए तो अं उन्होंने थैंक यू करा, है ना जी। तो आप उड़ीक कर रहे हैं जी अगले फोन कॉल का और तोड़े मैसेजिस का। नंबर नोट करो जी, 0181 243 171 9465 360 77।

राजा मैसेज पे चलते नहीं। और अंबाला तो महिंदर रोयला, रंजीत रोयला, मनी रूबी हैप्पी किरण ते सीमू, इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। लो जी, प्रोग्राम में जारी रखते हुए आप सुनते हैं महिंदर कपूर होना की आवाज़ों के गीत मैनु तेरा शबाब लै बैठा। यदि फरमाइश सू तरमासागर जी ने प्रोग्राम सुगात हमने हमने की है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में प्ले हो, सू कॉल करो। सा नंबर 0181 3241। तो आओ जी इस गीत का आनंद लेने जी।

0: प्रोग्राम चल रहा जी, सुगात और कड़ी जी सुइया कह रही हैं जी। इस वे रात के 12:15 और 15 सैकेंड हुए ने। अगर तुम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, सू फटाफट कॉल करो, क्योंकि प्रोग्राम अगे बढ़ता जा रहा जी और असी चाहते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा साढ़े स्रोता सूँ कॉल कर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन। हैलो,
1: हैलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं जी, कि शहर पिंड ग्रां तो? आकाशवाणी माध्यम ना बहुत खुशी की गल है। अज केड़ा गीत सुना दी है? ठीक है जी, गुरदास मान जी का गीत सुनना चाहते हो? उन्होंने फैन हो के वैसे ही गुरदास मान जी का मन किया? अज फैन हो जी। ओ वेरी गुड, चलो ठीक है जी। लो साहब, थोड़ी पसंद गीत आ रहा जी। प्रोग्राम की अगली पेशकश गुरदास मान हुण दी आवाज़ां च।

इस गीत की फरमाइश नु संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, पद मक्कड़, पिंगा वाला चौक गुराया तो कर रहे ने जी। इस गीत की फरमाइश नु पूषण कटारिया जी ने भी की है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम शिरकत करने के लिए।

सर नु मैसेज भेज रहे हैं जी, मानेवाड़ा रोड नागपुर तो दविंदर भटकर, सुशीला भटकर, इन्होंने नाल ने अंकिता अनिकेत भटकर, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। ए सुनना चाहते ने सुरजीत पिंदरखिया की आवाज़ कोई भी पंजाबी गीत, लो जी इन्हों की फरमाइश से सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश।

अगला मैसेज सानू भेजने जी गुरदित्ता मल्होत्रा शीतल मल्होत्रा तनवीर ते अनुभव ए सुनना चाहते ने कोई भी पंजाबी गीत कस्बा चिकलाना तो मुहम्मद जारिफ अंसारी नाइम अंसारी डॉक्टर अमीर अंसारी दानिश ते बहुत सारे साथी का भी स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच।

मॉल टाउन जालंधर तो सानू मैसेज पे रहे ने जी, राहुल अरोड़ा, दीपक अरोड़ा, पिंकू अरोड़ा ते बहुत सारे साथी। पद्म टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश तो मैसेज पे रहे ने सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह ते बहुत सारे इन्हां दे साथी। लो जी, इन्हां सब दी रली मिली फरमाइश ते आओ सुनदे हां प्रोग्राम दी अगली पेशकश गुरनाम पुलर दी आवाज़ां दे विच।

तुम सब ने छोड़ के जानू दिल तो नहीं करता पर फिर भी जाना पेगा है ना जी। अपने आज दोस्त नू प्रोग्राम सुगात इत्थे खत्म करन दी इजाजत दिओ पर तुसी किधर नहीं जाना साढ़े नाल इसी तरह बने रहो क्योंकि साढ़े बाकी दे प्रोग्राम जारी रहेंगे। बहुत जल्दी दोबारा मिलने दे वादे नाल इजाजत दिओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी।
1: की कर दी थी?
0: कुछ नहीं, बस सुती उठी थी।
1: अच्छा गाओ तो।
0: बोलो।
1: I love you.
0: I love you too.

दिसदे चाले तेनु कर दू पुलिस हवाले जद लाई पुलिस ने तौनी तेरी अकल ठिकाने आनी तू कहने गेर गड्डी राड़ गया तक्का लाउंदी नु सा।

प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मैं चितवाओ आसा नैनो तार तुहारी ए इलाही फरमान प्रभु प्यारियां दी प्रभु नाल प्रीत दा वर्णन करता है। मन दी ऐसी अवस्था उना वडभागी प्राणियां दी हुंदी है जिन्हां दा चित प्रभु दे चरणां विच लग्या हुंदा है, क्योंकि उना नूं ए दृढ़ भरोसा हुंदा है कि अकाल पुरख प्रभु आद तो ही जीवां दा मददगार रहा है। जीव दे जन्म तो पहला, उस दे जन्म तो बाद, उस दे अंत तक, इतों तक कि प्रलोक विच भी उसका सहाई हुंदा है। ऐसा तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाउंदे ने कि ऐसे प्रभु नाल मेरा चित जुड़ गया है। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरचंद सिंह रागी ते उना दे जत्थे ने।

प्रभस्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरचंद सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उस प्रभु ते अटल भरोसा रखण वाले प्राणी गुरमुख जन जीव रूप इस्त्रियां अपने चित नू उस अकाल पुरख प्रभु नाल जोड़ लैंदियां हन, क्योंकि उना दे मन अंतर दी वेदना नू अकाल पुरख प्रभु ही समझ सकता है। इस करके वो चिंता मुक्त हुंदियां ने। मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने।

0: मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने। सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या, व्याख्याकार ने ज्ञानी शिवतार सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण कीता होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 उपरो सुभाई मान है। इस पावन शब्द अंदर गुरु साहिब बख्शिश करदे हन कि इस संसार अंदर हर जीव दी वेदना ओह परिपूर्ण परमात्मा ही समझ सकता है, होर किसी अंदर ताकत नहीं कि ओह किसी दा दर्द हर सके। विचार गोचरे शब्द दियां रुहाओ वालियां पंक्तियां जो कि शब्द दा केंद्री भाव है इस प्रकार हन, मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। गुरु नानक देव जी फरमान करदे हन कि हे मेरी माँ, मेरा मन दया दे घर प्रभु दे चरणां विच विज गया है, मैनूं यकीन हो गया है कि परमात्मा तो बिना कोई होर किसी दूजे दा दुख दर्द नहीं समझ सकता। इसे लई हुण मैं किसी होर दी आस नहीं रखदा, क्योंकि मैं जानदा हाँ कि तू ही है जिहड़ा न्यासरियां दियां आसां पूरियां करदा है। पाशंग क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है, निरधन भयंग तनवंत है, रोगियंग रोग खंडन है। इसलिए हे भाई उस परमात्मा अगे झुकना चाहिदा है। विचार अधीन शब्द दियां आरंभ वालियां पंक्तियां अंदर सतगुरु जी फरमान करदे हन, मन मंदर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बसत है, बहुड़ जन्म।

0: ना आवां। हे प्रभु, जदों दा मैं जान लिया है तू ही सभना दा दुख दर्द हरदा है, ता मेरा मन तेरे रहन दा टिकाणा बन गया, भाव प्रभु दे रहन ली मंदर बन गया। मेरा हरेक ज्ञान इंद्रा इस मंदर दी यात्रा करन वाला रमता साधु बन गया, भाव मेरे ज्ञान इंद्रे बाहर भटकण दी थां अंदर वसदे परमात्मा वल परत आए। हुण मैं हिरदे रूपी तीर्थ उत्ते ही इशनान करदा हाँ, इसी इशनान सदका परमात्मा दी सिफत सलाह दा शब्द मेरी जिंद विच टिक गया है, मेरी जिंद दा आसरा बन गया है। इस वास्ते मैनू यकीन हो गया है कि मैं मुड़ जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं आवांगा। विचार अधीन शब्द दियां अगलियां पंक्तियां हन, अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी। हे अपहुंच ते अदृष्ट प्रभु, तू ही साड़ी संभाल कर रहा है, तेरी व्यापकता हर थान नज़र आउंदी है, पानी विच धरती उत्ते ते आकाश अंदर, भाव हर थान तेरी ही जोत मौजूद है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, बिसम पेखै बिसम सुनिया बिसमाद नदरी आया, जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहा समाया। विचार अधीन शब्द दियाँ अगलेरियां पंक्तियां अंदर गुरु नानक साहब फरमान करते हैं, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावां तेरे तुझ बिन अवर न जाना, मेरे साहिबा गुण गावां नित तेरे। हे मेरे मालक प्रभु जियो, सब जीवां दे मन ते शरीर तेरे ही रचे हुए हैं, सिख्या अकल समझ ये सब कुछ जीवां नूं तेरे कोलों ही मिलती है। इस संसार अंदर मैं तेरे बराबर होर किसी नूं नहीं जानता, तू ही रचनहार है, आप ही नाश करन वाला है, तेरे तो बगैर इस धरती ते होर कोई नहीं, तू ही बेअंत है। विचार अधीन शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां अंदर सतगुरु जी फरमाते हैं, जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। गुरु साहिब बख्शिश करते हैं कि हे अकाल पुरख, सारे जीव तेरे ही आसरे हैं, तेनों ही सब की संभाल का फिक्र है, इस करके हे परमात्मा जीओ, तेरे अगे यही अरजोई है कि जो तेरी रजा होवे वो मैनू चंगी लगे, मैं तेरी रजा विच राजी रहा। मेरी अरदास है कि यह जिंद शरीर सब कुछ तेरा है, इस धरती उत्ते तेरी ही वडियाई है, मैं नमाणे नूं इत्थे कोई नहीं जानदा, इसलिए हे प्रभु सदा इस शरीर मंदर दे अंदर मन अंदर नाम टिका के अपनी सदा होंद बनाई रखी।
1: मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी सिवतार सिंह। अकाल पुरख प्रभु दुखां दा नाश करता है, इंसान नूं पै तों रहत कर दिंदा है, अपने भगतां दी पैज रखता है। मनु ओ भव खंडन है, दुख पंजन है, ते भगत वच्छल है, निराकार भी है, तां ते मेरा मन उस प्रभु नाल लग गया है। अकाल पुरख प्रभु ने ऐसी कृपा कीती है कि मैं काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि ते जित प्राप्त कर ली है, पंजे दूत वस विच आ गए ने। भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकारे, कोट प्राद मिटे खिन पीतर, जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे किन पीतर जां गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: महला पहला।
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, घर पांडे इटां कियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़।

में दीर्घ रोग है दारू पिसमाए, कृपा तै जी अपनी तां गुर का शब्द कमाए। नानक सुनो जनो, इत संजम दुख जाए पौड़ी।

कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दहु कर चारो मित्र न पुत्र कतर साजन साख उल्टत जात बिरह की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो हे भगवान।

दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुत पाई ताहूं ते लै रखी निरारी तामन पावन पूरक मावन एह बिद करत औतन जारी करम धर्म संजम सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखे बिरख स्थावर बहु बिद जोन।

ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसह त्याग ज्ञान को जाचें मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दा

आवधि कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंध्यो ना जात, विदे मन

उद्यम कर लगे बहु पाटी, बिछरे अनेक शास्त्र बहु खटुआ, पसम लगाए तीरथ बहु प्रमते, सुखम दे बंदे बहु जटुआ, बिन हर पयन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका अनेक पात।

पाठ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजिस बगल समादं मुख झूठ भूखन सारं त्रैपाल तिहाड़ बेचारं गल माला तिलक लिलाटं दो धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं साफ पुख नीचो कर्मं कहो नानक नीचो त्यावै इन सतगुरु वाट।